आकाशवाणी एफ एम रेनबो ते हुण पेश है साडे अज दे प्रसारित होण वाले प्रोग्रामां दा वेरवा परिचय दे तहत। हुण तो कुछ कु पलां दे इंतजार ते सुनोगे भगती संगीत दा प्रोग्राम वंदना। सवेरे 7 बजे एफ एम न्यूज़ हेडलाइनस ते उस तो ठीक बाद जानकारी ते मनोरंजन नाल भरपूर प्रोग्राम लैके हाजिर हो जावांगे गुड मॉर्निंग जलंधर जो चलेगा 8:30 बजे तक। सवेरे 8:30 बजे

सवेरे 9 बजे एफएम न्यूज हेडलाइंस ते उस तो ठीक बाद तुहाडा मन पसंदीदा व्हाट्सएप दे ऑडियो मैसेजेस ते बेस्ड प्रोग्राम दिल अपना पंजाबी सवेरे 10 बजे एफएम न्यूज हेडलाइंस और उस तो ठीक बाद गीत बहार सवेरे 11 बजे एफएम न्यूज हेडलाइंस ते उस तो ठीक बाद तुहाडा मन पसंदीदा लाइव टेलीफोन एंड प्रोग्राम पंजाबी तड़का दोपहर 12 बजे एफएम न्यूज हेडलाइंस सुनने तो ठीक बाद प्रोग्राम होम स्वीट होम जिस विच तुसी अपने प्यारे घर नूं होर ज़्यादा प्यारा ते खूबसूरत बनाने दे टिप्स नोट कर पाऊंगे अपनी हेल्थ नूं अपने लाइफ स्टाइल नूं अपडेटेड रखने दे टिप्स मिलनगे तुहानूं इस प्रोग्राम दे जरिए दोपहर 1 बजे मिड डे मेलेडीज और इस प्रोग्राम दरमियान 1:40 तो 1:50 तक पंजाबी खबरां दोपहर 2 बजे दिल आज शायर है दोपहर 3 बजे ले चलांगे तुहानू साडे दिल्ली केंद्र एफएम रेनबो दिल्ली केंद्र तो साडा खास प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर शाम 4 बजे एफएम रेनबो जलंधर केंद्र तो प्रोग्राम हैलो जलंधर युवा दोस्त लेके आएंगे प्रोग्राम युवाणी शाम 5 बजे शाम 6 बजे साडा खास ईवनिंग शो एंजॉय करूंगे लव यू जिंदगी प्रोग्राम दरमियान 6:20 तो 6:30 तक प्रादेशिक खबरां ते 6:30 तो 7 बजे तक जारी रहेगा लव यू जिंदगी ताज़ा खबरां तो जानकारी ले पाऊंगे एफएम न्यूज हेडलाइंस के जरिए 7 बजे और उस तो ठीक बाद प्रोग्राम फिल्मी दुनिया रात 8 बजे एफएम न्यूज हेडलाइन सुनन तो ठीक बाद प्रोग्राम मसाला मिक्स रात 9 बजे एक बारी फिर तो सुनोगे एफएम न्यूज हेडलाइंस और उस तो ठीक बाद दिल चाहता है रात 10 बजे प्रोग्राम शामे गजल और रात 10:30 साड़ी सभा का आखिरी प्रोग्राम लेके हाजिर हो जावांगे एक प्यार का नगमा है ते आओ हुन सर्वन करदे आं भगती संगीत दे नाल सजिया होया प्रोग्राम वंदना बस हम तो कुछ को पलांदे इंतजार थे

परमात्मा दी आस जिन्हां अखां नूं रहिंदी है परमात्मा उन्हां नूं तरस जरूर दिंदा है। परमात्मा दी आस उस नाल मिलण दी तांग जिस दिल दे विच रहिंदी है परमात्मा उस सच्चे दिल दे विच जरूर वास करदा है। ते परमात्मा दी लिव जिस दिमाग दे विच जिस सुरती दे विच जिस इंसान दे अंदर रहिंदी है परमात्मा उस नूं चंगी सोझी जरूर दिंदा है।

तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सुसत्य व्रत राम भरोसो एक। गोस्वामी जी कहते ने कि विद्या विनय ज्ञान उत्साह पुन्य ते सच, ये सारा कुछ जदों विपत्ति साढ़े ते आती है तो वो विपत्ति च साथ देने वाले गुण ने, ते ये सब कुछ असी सिर्फ ते सिर्फ उस परमात्मा दे उस दे भरोसे ते रह के ही सब कुछ हासिल कर सकते हैं।

परमात्मा रखवाला जरूर हुंदा है। जदों असी परमात्मा दे नाल सिर्फ उस ईश्वर वाला रिश्ता नहीं, असी रिश्ता बनाउंदे आ उसनू अपना सखा मन के, अपना मित्र मन के, अपना पिता मन के ते अपनी माता मन के, हर रूप दे विच जदों असी उसनू याद रखदे आ, याद करदे आ, तां उह साडे सारे ही संकट मोचन जरूर आउंदा है।

0: बोलो पवन सुत हनुमान की जय।
1: तुलसी काया खेत है मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं बुवे सोलुने निदान। ये जो मानव शरीर है ये एक खेत दे समान है। तुलसीदास जी कहते ने साडा जो मन है इस शरीर नू ओ खेत दे समान दस के मन नू काम करन वाला किसान दसदे ने। तुलसीदास जी कहते ने पाप ते पुन्न ये दो तरह के बीज ने, ते इंसान जिद्दां दा करम रूपी बीज बोंदा है अंत दे विच उनू फल ओदां दा ही मिलदा है। इस करके कहते ने कि परमात्मा दा नाम सिमरन दा बीज इंसान दे मन अंदर बीजिया रहना चाहिदा है।

कजाकिस्तान विच ISSF विश्व कप निशानेबाजी विच नीरू टंडा अते विवान कपूर दी भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्सड टीम मुकाबले विच कांसे दा तमगा जित्या है। ਇਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ FM ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਸ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੇ।

कुछ तो आज थोड़ी हवा भी सर्द थी, कुछ तो तेरा ख्याल भी था, दिल को खुशी के साथ साथ आज कोई मलाल भी नहीं था, क्योंकि आज वही दिन था जब तुमसे मुलाकात का खत्म होना इंतजार था। वाह वाह वाह, ले की मैं तुकबंदी करके क्या शायरी बोल देती है सुरे सुरे। अच्छी लगी कि नहीं लगी? ना लगन का तो सवाल हो ही नहीं सकता। शायरी मैं चाहे ऑन द स्पॉट बनाई होवे, कोई लाइन कोई अखर की तो चक्या होवे, लेकिन देखो कितनी खूबसूरत शायरी बना देती ना सिर्फ और सिर्फ तुहाडे लई। सो जी नमस्कार, सत श्री अकाल एंड अ वेरी वेरी रिफ्रेशिंग एंड फुल ऑफ पॉजिटिविटी वाली हैप्पी हैप्पी मंडे मॉर्निंग तुहानू सारयां नू। मैनू पता है कि मंडे मॉर्निंग बड़ी हैवी जी लगती हुंदी है, बड़ा नैचुरल जिहा है जदों आराम दे नाल तुसी संडे दी मॉर्निंग इंजॉय कीती होवे पूरा वीक बहुत ज़्यादा काम करके। और कई बार काम इदा दा हुंदा कि चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी दे विच उस काम नू आपां गिणा होवे, लेकिन ऑफिस का काम तो ऑफिस का ही हुंदा है ना। हाँ जी, की क्या तुसी ट्रैकिंग ते चले गए सी? चलो, मतलब लत्तां ने तो काम किया है ना। सो जी बॉडी थोड़ा जहा होर रिलैक्सेशन मांग रही है, पर कोई गल नहीं, मंडे मॉर्निंग है तो उठना भी पैना है, काम ते भी जाना पैना, तो काम करना भी पैना है, कोई गल नहीं। आप बुझे मन के नाल ही खिड़े खिड़े मन के नाल इस प्यारी जी खूबसूरत बड़ी ही ब्लैसड जी मॉर्निंग का स्वागत करना है। ठीक है, चलो उठो उठो, शाबाश। बाहर देखा मौसम कितना खुशनुमा होया पिया है, नहीं देखा तो फिर उठ के देखो, क्योंकि नवी समीर नवी उम्मीदा ते नवी पॉजिटिविटी ते एक फ्रेश जई स्माइल दे नाल स्वागत कर दिया मिलजुल के आज दी इस प्यारी जी मॉर्निंग दा, क्योंकि तुसी सुन रहे हो तुहाडा अपना प्यारा जिहा रेडियो दा साथ है तुहाडे नाल, यानी कि ट्यून के तहत तुसी एफएम रेनबो 102.7 ते नाल दी नाल 103.6 ते, और जो दोस्त सानू न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप दे जरिए सुन रहे ने देशां ते विदेशां दे कोने कोने च, तुहाडा ते स्पेशल थैंक यू है जी। कईयां ने ते सवेरे सवेरे अपडेट पहुंचा दिती है कि ओ देश दे दूर दराडे किसी दूर वाले कोने ते सुन रहे ने साडा एफएम रेनबो जलंधर, दिल तो थैंक यू है जी। और इस प्यारी जी थैंक यू दे नाल हुण टाइम हो गया है 7:06 और पूरे 46 सेकेंड, यानी कि टाइम हो गया है तुहाडे फेवरेट वाले शो दा। और इस फेवरेट वाली मॉर्निंग दा कंपेनियन शो जो हुंदा है हर रोज तुहाडा, यानी कि इनफॉरमेशन ते एंटरटेनमेंट दी फुल ऑन डोज दे नाल सजा होया प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर। सो हाजिर हाँ मैं जी तुहाड़ी दोस्त पूजा टोहानी माइक दे इस पार लैके फुल ऑन एनर्जी दी मंडे मॉर्निंग वाली डोज ते तुहाडे मंडे मॉर्निंग दे ब्लूज नू दूर करन दे लई, उसनू टोटली इन ग्रीन्स दे विच कन्वर्ट करन दे लई विद अ हैप्पी एंड पॉजिटिव एंड ब्रॉड स्माइल दे नाल वेलकम दे नाल देख लैने कि अज दा सफर कित्थे तक है। 8:30 तक सुनोगे गुड मॉर्निंग जलंधर मेरे नाल, 8:30 खबरां, 8:40 तो 9 बजे तक पंजाबी बीट म्यूजिक बैक टू बैक।

मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ।

मुझे सौगंध भारत भूलू ना एक क्षण तुझे, है मुझे सौगंध भारत भूलू ना एक क्षण तुझे, रक्त की हर बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे, युद्ध ये सम्मान का है मान रहना चाहिए।

0: जी, क्योंकि इतिश साढ़े सब तो ऊपर है। वेलकम बैक। और जिवें प्रॉमिस किया सी कि इस गीत तो बाद असी दोबारा ट्राई करांगे साढ़े अज दे मेहमान डॉक्टर भुपिंदर कौर जी दे नाल कनैक्ट करन दी। ते लो जी, आपां कनैक्ट करके उन्हां नूं ले आए आ फोन लाइन ते। और सब तो पहला स्वागत करदे आ डॉक्टर भुपिंदर कौर बब्बर मैम दा। हैलो।
1: हां जी, सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल मैम, बहुत-बहुत स्वागत तुहाडा प्रोग्राम दे विच।
1: थैंक यू
0: एंड वेरी गुड मॉर्निंग मैम।
1: गुड मॉर्निंग
0: लिसनर्स। दस दिए कि डॉक्टर भुपिंदर कौर बब्बर मैम जो कि प्रिंसिपल ने और जोलॉजिस्ट भी ने, और अज इन्हां दे नाल गल आपां करांगे इंटीग्रेटेड ममीलियन ड्रॉडेंस नील गाय ते वाइल्ड बोर बारे, ते नाल ही पेस्ट मैनेजमेंट बारे भी। बड़ा हैवी जिहा मैं कुछ लाइन या है ना टॉपिक दस दिता है। तो मैम, सब तो पहला साडे श्रोतियां नूं इह सधारण जे शब्दां दे विच दसो कि इंटीग्रेटेड ममीलियन पेस्ट मैनेजमेंट असल च हुंदा की है।
1: एक्चुअली मैमल्स जिवें तुसी नाम लेने, इह नील गाय, वाइल्ड बोर ते चूहे,
0: इह
1: तीनों मैमल कैटेगरी च आंदे ने। ते इह तीनों ही फार्मर दे खेतां दे विच बहुत ज्यादा नुकसान करते ने।
0: जी,
1: तकरीबन जिहड़े चूहे ने ओह 5-10% तक, ते जिहड़ी नील गाय ते वाइल्ड बोर जंगलां दे लागे ते जिथे पानी दे स्रोत अवेलेबल ने उथे 30-40-50% तक भी नुकसान कर जांदे ने। और कई वारी अगर खेत दे विच वड़ जान, पूरे दा पूरा खेत भी रातों रात खाली कर जांदे। तो इस करके इना दी जिहड़ी मैनेजमेंट दी लोड़ है।
0: जी, जी।
1: और क्योंकि नील गाय ते वाइल्ड बोर जिहड़े ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट दी अंडर प्रोटेक्टेड ने, इना नू असी मार नहीं सकदे।
0: जी।
1: तो इना नू असी सिर्फ प्रिवेंटिव मेथड से नाल ही अपने खेतां दा बचा कर सकदे आ।
0: जी।
1: तो अगर अपा इको ही तरीके दे नाल अगर इना दी बार बार मैनेजमेंट करी जाइए, इना दे बीच हैबिचुएशन डेवलप हो जांदी है, उस प्रिवेंटिव मेथड तो जेड़ा डर है वो खत्म हो जांदा है।
0: जी।
1: इस कर असी एक तो वध तरीकिया नाल ही इना दी मैनेजमेंट कर सकते हैं। उन्हों इंटेग्रेटेड ममेलियन पेस्ट मैनेजमेंट कहते ने, यानी कि एक मैनेजमेंट मैथड तो वध अगर जदों असी मैनेजमेंट मैथड यूज करते हैं उन्हों इंटेग्रेटेड ममेलियन पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं।
0: जी। हाँ, वाइल्ड बोर यानी कि असी कह सकते जंगली सुअर, और रोडेंट्स असी ये कह सकते हैं लिसनर्स नूं दस दे कि जिवें एक चूहे होंदे है ना जंगली। हाँ। आप कह सकते हैं कि खेतों नूं आके नुकसान पहुंचाते हैं, सो उन्हां बारे गल हो रही है। नील गाय का तो चलो पता ही है। तो जे असी गल करिए पंजाब की, मतलब ये समस्या सारे भारत दे विच है कि सिर्फ पंजाब दे विच है? जे गल करिए सिर्फ पंजाब की, तो किन्नी क गंभीर है ये समस्या?

0: हाँ जी, जिहड़े चूहे ने ये ता पूरे भारत च ही भावे घर च देख लीए भावे खेतां च देख लीए नुकसान करते ने
1: जी।
0: ठीक है, ते जिहड़े चूहे ने इन्हां नूं असीं मार भी सकते हैं। साढ़े को रोडेंटीसाइड यूनिवर्सिटी ने रिकमेंडेड कीतियां हुई ने जिंक फॉस्फाइट से ब्रोमाडाइलोन
1: जी।
0: इस तो अलावा जिहड़े प्रिवेंटिव मैथड ने, यानी कि ये जिहड़े चूहे ने ना ये लुक के, कोई भी जानवर है वो अपने आप दे बचाव वास्ते लुक के रहिंदा है
1: जी।
0: ठीक है, अगर अपना उन्होंने लुकन के जिहड़े स्रोत ने वो खत्म कर दईए तां जिहड़े चूहे ने उन्हां दी असीं रोकथाम कर सकते हैं। सो जिहड़े चूहे ने वो तो पूरे भारत च अवेलेबल ने, बट इन्हां दीआं जिहड़ीआं प्रजातियां अलग अलग ने
1: जी।
0: ठीक है, सो जिहड़े वाइल्ड बोर है पूरी दुनिया दे विच ही अवेलेबल है ना
1: जी।
0: पूरी दुनिया दे विच ही इहदा टैरर है, क्योंकि वाइल्ड बोर ते चूहे इन्हां दोवां दे इकल्ले खेतां च नुकसान नहीं करदे, इन्हां दे नाल कई तरीके दीआं बीमारियां भी हो सकदियां ने
1: जी।
0: ठीक है, सो इहदा इन्हां दोनों दा काफी टैरर है। ते जिहड़ियां नील गावां ने ओह दे आर नेटिव टू इंडिया
1: जी।
0: ठीक है, यह नॉर्थ इंडिया दे विच ने या इधर नेपाल साइड वाल कुछ मिल दिया ने
1: जी।
0: सो इस तो अलावा यूएस टेक्सास दे विच एज इनवेसिव स्पीशीज भी नील गाय मिलती है
1: जी।
0: सो ये जिहड़ियां नील गाय ते वाइल्ड बोर ने ये ज्यादातर जंगलां दे लागे जिथे इन्हां नूं लुकण नूं जगह मिलती है ते जिथे पानी दे स्रोत अवेलेबल हो उन्हां खेतां दे लागे ये ज्यादा नुकसान करते
1: हैं। ते जे असी मौसम दी गल करिए, जंगली सूअर हो गए, नील गां हो गई, ते या फिर ये चूहे, ये सारे अलग अलग मौसमां दे विच आउंदे ने या कोई खास फसल या फिर मौसम इन्हां दा पसंदीदा जिहदे विच इन्हां दा टैरर या आतंक ज्यादा हुंदा?
0: हां जी, जिवें अज कल जिवें पैडी दा सीजन है ना
1: जी,
0: ते मानसून सीजन भी अगों आ रहा है
1: जी,
0: है ना जी। इना दिना दे विच जंगलां दे विच इना नू खान नू काफी मिल जांदा है
1: जी।
0: ठीक है, सो उस टाइम ते जंगलां तो ये घट बाहर निकलदे ने, आंदे हैगे हर टाइम अवेलेबल ने
1: जी।
0: ठीक है, उस टाइम ते मतलब ये माइग्रेट कर जांदे ने या इधर उधर जिथे इना नू खान नू मिल जांदा है। जंगलां च मोस्टली इना दिना च खान नू मिल जांदा है जानवर नू, सो जानवर बाहर नहीं आंदा। ते असीं इह देखिआ झोने दे विच वाइल्ड बोर दा ते नील गां दा जिहड़ा नुकसान है ओह घट है
1: जी।
0: ठीक है, बट कणक दे विच सर्दियां दीआं जिहड़ीआं फसलां होर ने जां सब्जियां हो गईआं फ्रूट हो गए उहनां जगह ते इह बहुत नुकसान करदे ने, खास करके मक्की वाले खेतां दे विच। अज कल जिहड़े मक्की दे पैच जिथे अवेलेबल ने
1: जी,
0: क्योंकि अजकल बाकी तां जिहड़े खेत खाली पे ने मक्की दे पैच अवेलेबल हैगे ने जिथे या जिथे सब्जियां दे पैच अवेलेबल ने जिहड़े छोटे छोटे खेत ने उथे इहनां दा नुकसान काफी है
1: जी। ते
0: फिर भी क्योंकि पिछे बारिशां होईआं सीगीआं अंदर जंगलां दे विच इहनां नूं पाणी भी मिल रिहा ते खाण नूं भी मिल रिहा, पर इस इहनां दिनां दे विच अजकल असीं देखिआ कि घट है नुकसान
1: जी। ते मैम मेरे ना दिमाग दे विच एक गल आ रही, जिवें तुसीं दस्या कि नील गां ते जंगली सूअर ते मारे नहीं जा सकदे लेकिन चूहे मारे जा सकदे, लेकिन फिर भी बड़े जिहड़े किसान भरा या लिसनर्स मेरे वर्गे होणगे जिहड़े मारन दे नाम तों ही दिल है ना दुखदा ते उह नहीं चाहुंदे होणगे इहनां नूं मारिया जावे, ते की इत्थे मेरा सवाल इह है कि इन्हां नूं रसायणिक तरीक्यां तों इलावा भी कोई होर भी इदां दे तरीके ने जिहड़े मतलब वातावरण दे अनुकूल होण लेकिन इन्हां तों बचाव हो सके ते सानूं मारना भी ना पवे चूहियां नूं?
0: हाँ जी, इहदे विच इह वे कि जदों जिवें किसान है अगर उह अपने खेतां दे विच चक्कर लांदा रहे ते उहनूं शुरू च ही पता लग जांदा हैगा चूहे का नुकसान है कि नहीं, अगर काफी देर खेत चक्कर ही नहीं लाएगा मॉनिटरिंग नहीं करेगा फिर जो तो एकदम बढ़ जाएगी प्रॉब्लम फिर तो दवाई रखनी पैंदी है
1: जी।
0: ठीक है, ते अदरवाइज जेड़ा हैगा है जिवें मैं तुहानू कहा है कि इन्हां दीआं जिहड़ीआं लुकण दीआं थावां घटाओ
1: जी,
0: जिवें नदीन अगर खेत च होणगे तां लुकण नूं इन्हां नूं जगह मिलेगी, सो नदीन जिन्ने घट तों घट खेत च होणगे ते जिहड़ीआं पक्कियां वट्टां ने पक्कियां वट्टां जे अपने पक्के घर बना के रहिंदे ने चूहे
1: जी,
0: जिन्नी उच्ची वट होएगी ते जिन्नी चौड़ी वट होएगी उन्ना चूहा ज्यादा होएगा।
1: ओके,
0: ठीक है, सो

स्कीम दे टैली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता ते जागरूकता प्रोग्राम नाल जुड़ो। कानूनी मदद टैली लॉ ते टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 ते वेबसाइट www.tallylaw.in तो प्राप्त की जा सकती है। एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर की मुड़ उसारी के मौके से सोमनाथ अमृत पर्व 2026 विच हिस्सा लेंगे। असम के राज्यपाल ने हेमंत बिस्वा सरमा नूं राज विच नवी सरकार बनाउण लई सदा दिता है। भारत विश्व पद्धर ते स्थापित नवे आउण योग ऊर्जा समर्था विच तीजे स्थान ते। गुरुग्राम दे एक विशेष पीएमएलए अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले विच पंजाब दे सनत मंत्री संजीव अरोड़ा नूं ईडी दी 7 दिनां दी रिमांड ते भेज दिता है। राज्यसभा मैंबर संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने कहा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीजे गेट दौरान पंजाब विच 835 करोड़ की लागत नाल सड़क बनणगियां। स्कूली सिख्या विच पंजाब नीति आयोग की रिपोर्ट विच देश का सब तो वधिया कारगुजारी दिखाउण वाला सूबा बनिया। सिख्या मंत्रालय गर्मियां दीआं छुट्टियां दौरान देश भर के सारे स्कूलों विच भारती भाषा समर कैंप 2026 ला रहा है। उत्तराखंड प्रशासन ने खराब मौसम दरमियान चार धाम यात्रियों अते सैलानियों नूं सुचेत रहण अते सुरक्षा मापदंडां दी पालना करन दी अपील कीती है। मौसम विभाग ने अज पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ अते दिल्ली च हनेरी झक्खड़ नाल बिजली लिशकण दी पेशीनगोई कीती है। औरतां दे एएफसी अंडर 17 एशिया कप फुटबाल दे क्वार्टर फाइनल च अज भारत दा मुकाबला मेजबान चीन।

मेरे सामने ने जी बड़ा प्यारा जा सीन, चार पांच सुहाणियां सोहने सोहने जे ड्रेसिस पा के तंदूर लाया होया है जी, और मिल के जिदा आप कह सकते हैं कि जेडे घर के बहर एक शानदार जी जगह होंगी है, इतने जगह इन्होंने बनाई अपने घर के बहर।

वेलकम जी, वेलकम बैक, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब ते नमस्ते ते सब नू प्यार भरी एक बार फिर तो जी, निगी जी प्यारी जी हग, वड्डियां नू जी पैरी पौना ते छोटियां नू प्यार ते हाणियां नू हैलो हाय सत श्री अकाल। प्रोग्राम शुरुआत करदे आ जी, क्योंकि जी स्टूडियो की घड़ी ते 10:05 ते 51 सैकेंड हो गए ने ते तुहाडी प्यारी अज दोस्त रणदीप कौर तुहाडे नाल है जी। 10 तो लैके 2 तक ये सफ़र आपां कट्ठे बिताउणा है ते पूरे दा पूरा इंजॉय करना है। तुहानू पता ना कि जिन्ने भी आरजे इस प्रोग्राम या जिहड़े भी प्रोग्राम शुरू करदे ने सब दे नाल तुसीं बहुत सारा हासा ठट्ठा करते हो तो बहुत सारा प्यार लेंदे भी हो तो आशीर्वाद देंदे भी हो। बिल्कुल जी, क्योंकि जी ये रंगला माहौल इस रेडियो स्टूडियो दे विच होंदा है जिदा नाम है जी आकाशवाणी जलंधर, यानी कि FM बैन 102.7 मेगाहर्ट्स, जो कि तुसी ट्यून कर लेंदे हो सवेरे तड़के साजरे तो फिर सारा दिन ते शाम ते फिर रात तुहाडी बीतदी है। बिल्कुल जी, बहुत सारे वक्रे वक्रे प्रोग्राम। सो प्रोग्राम गीत बहार दे विच आगाज़ करदे हां जी। ओ खिलाड़ी जिन्हें खिलाड़ी फिल्म की शुरुआत की है, मतलब की सी जदों, तो उन्होंने भी नहीं सी पता कि एक खिलाड़ी तो बाद दूजा खिलाड़ी, तो फिर पता नहीं किड़ा खिलाड़ी, कभी खिलाड़ी 786, कभी मैं खिलाड़ी तू उनाड़ी, तो कभी खिलाड़ियों के खिलाड़ी, तो उस तो बाद मिस्टर एंड मिसिज खिलाड़ी याद आ गया। बिल्कुल जी, मैंने पता है कि जो खिलाड़ी का नाम आता ना तो सब दे दिमाग दे विच अखां दे विच ओ वाली छाप जिहड़ी कि अक्षय कुमार ने उस समय तो लैके अज तक छड़ी है, बिल्कुल जी वो याद आ जाती है। 1994 दे विच बनी है फिल्म मैं खिलाड़ी तू नाड़ी, द गीत गुनगुनाया जी कुमार सानू ते अलका याग्निक ने, तुसी जाना किधरे नहीं, क्योंकि जी हाले तो हुई है शुरुआत ते बड़ा लंबा समा आपां इदां ही कठियां बिताउणा है। स्टे ट्यून्ड।

जी दोस्तों, प्रोग्राम गीत बहार तुसी ते मैं बिल्कुल तैयार बर तैयार, क्योंकि जी प्रोग्राम जे होवे बहुत वधिया ते नाल दी नाल सोहणियां सोहणियां आवाज़ां ते सोहणे सोहणे सिंगर्स जिन्हां ने अपनी आवाज़ दा लोहा मनवाया होया है उस समय तो लैके उस दहाके तो लैके अज तक भी उन्हां दी आवाज़ उन्हां दा चेहरा और उन्हां दे गीत जिहड़े ने उह सानूं हमेशा फॉरएवर जिहड़े ने याद दिवाउंदे ने उन्हां दी प्यार दी तिनाल दी नाल उस एहसास दी जिहड़ा कि तुहाडा एफ एम रेनबो दी नाल है। 102.7 एफ एम रेनबो ते प्रोग्राम चल रहा जी गीत बहार। एंड हुण मैं गल करन जा रही हाँ फिल्म फिजा, जो कि एक इमोशनल बॉलीवुड फिल्म से जिस विच फैमिली पेन एंड इमोशनल रिलेशनशिप नू बहुत ही सीरियस तरीके नाल दिखाया गया है। इस फिल्म दे विच ना ऋतिक रोशन एंड करिश्मा कपूर अते जया बच्चन दी एक्टिंग नू लोकां ने बेहद पसंद किया है। जी बिल्कुल, फिजा यानी कि होप सैक्रीफाइस ते फैमिली लव वाली ये फिल्म है। एंड दी फेमस वाले सॉन्ग आजा माहिया एंड महबूब मेरे याद तो कुछ आया है ना, इस करके मैं थोड़े थोड़े हिंट तुहानूं दिनी रहनी है कि तुहानूं कुछ याद आवे ते बाकी तुहाडी याद नूं तरोताज़ा करन दे लई। प्रोग्राम है जी गीत बहार 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते।

जी दोस्तों, ये वाला टाइम सच्ची डिस्को वाला है। ते कदी कदी कुछ जिंदगी दे विच इदां दा समां वी आउंदा है कि जदों साडा मन कर रहा हुंदा कि असीं बहुत खुश होना है, ते कुछ सरकमस्टांसिस इदां दे हो जांदे ने कि साडा दिल खुश हुंदियां होइयां वी उदास होण लग जांदा है। हुंदा है ना इदां? बिल्कुल जी, इदां हुंदा होवेगा, क्योंकि हर किसी की जिंदगी जिहड़ी ना इदां ही चलती है। कदी पहाड़ी उपर चलती है ते कदी नीचे आ जाती है। कदी सैड सोंग सुनने नूं मन करदा ते कदी रोमांटिक वाले गीत जड़े ने साडे जड़े बहार साडी जिंदगी च लैके आउंदे ने।

जी दोस्तों, 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से प्रोग्राम गीत बहार। सवेर दा वेला होवे ते सवेर दे वेले दे विच इदां दे गीत तुहाडे पसंद दे होण, मतलब तुहानू मस्त मस्त जिहा माहौल बना देण ते नाल दी नाल तुहाडे प्यारे किसे नू याद करन दे विच वी बहुत मदद करदे ने। सो इदां दे जिहड़े गीत ने ना, अपनी मैमरी दे नाल नाल अपने मोबाइल दी ना एक लिस्ट दे विच जरूर रख्या करो। जदों भी तुहाडा मन करे कि हाँ जी तुहाडा मन कुछ उदास है या कुछ इहो जिहे रोमांटिक सोंग सुणन नूं जी करदा है ते तुसीं एफएम बैंड 102.7 ते प्रोग्राम गीत बहार चलाउणा है जिहड़ा कि 10 बजे तों 11 बजे तक हुंदा है ते उहदे विच फिर गीतां दी लड़ी, गीतां दी बहार ते गीतां दा गुलदस्ता। जी बिल्कुल, डेली डेली डेली वाला ये डोज है और डोज दे विच बड़े सारे गुलदस्ते होंदे ने, पर गुलदस्ते दे विच जिहड़े फुल होंदे ने ना वह लैके आउनी आ जी मैं तुहाडे वास्ते। ते जी तुहाडे मनपसंद दे प्रोग्राम दे विच ई प्रोग्राम भी तुहाडा फेवरेट वाला है। एंड अगला गीत कौन सा मैं आपको सुनाऊं? ते लो जी, मैं चूज किया जी फिल्म जो कि 2004 दे विच बनी सी, मैं हूं ना। अभिजीत दी आवाज़ दे विच अगला गीत जी बिल्कुल थाडे रेडियो सेट्स ते, तुम्हें जो मैंने देखा, शाहरुख खान दा गीत है जी, कुछ डांस तो बनता है।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया।
0: लड़ीवार नाटक होया।

जी समा हो चुकिया जी FM न्यूज हेडलाइंस दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज कर्नाटका अते तेलंगाना दे दौरे ते होंगे। वो अज हैदराबाद विच लगभग 9,400 करोड़ रुपए के वक्-वक् विकास प्रोजेक्टां दा उद्घाटन करनगे अते नींह पत्थर भी रखणगे। तमिलनाडु विच TVK पार्टी दे मुखी सी जोसफ विजय अज राज दे नवे मुख्यमंत्री वजों सहुं चुकणगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अज रंगास्वामी नूं पोंडचेरी दा मुख्यमंत्री नियुक्त कीता है। रक्षा खोज अते विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद विच स्कैमजेट कंबस्टर दी सफल परख नाल हाइप्रोसोनिक मिजाइल विकास प्रोग्राम विच वड्डी सफलता हासिल कीती है। गृह मंत्री अमित शाह अज नवी दिल्ली विच एक उच्च पदरी मीटिंग च संभावित हड़ां अते लू नाल नजिठण दीआं तैयारियां दी समीक्षा भी करनगे। केंद्र सरकार ने कीरतकोड लई नवें दिशा निर्देश जारी किए ने। यह केंद्रीय मंत्रालय विभागों खुदमुख्तियार संस्थावां अते केंद्रीय जनतक खेत्र के अदारियां विच काम करदे आउटसोर्स अते कंस्ट्रक्टर दे वर्करां दी सुरक्षा नूं मजबूत करनगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा नूं मनी लॉन्ड्री संबंधी मामले विच चंडीगढ़ तो गिरफ्तार किया है। गैंगस्टरां दी वार मुहिम के 109वें दिन कल पंजाब पुलिस ने 536 थावां ते छापेमारी दौरान 221 व्यक्तियों 17 हथियारां समेत गिरफ्तार किया है। ते उधर भारत दीयां 9 महिला मुक्केबाज़ ताशकंद विच एशियाई मुक्केबाज़ अंडर 15 ते अंडर 17 चैंपियनशिप दे फाइनल्स विच पहुंच गईयां ने। IPL क्रिकेट विच जयपुर च गुजरात टाइटन्स अते राजस्थान रॉयल्स नूं 70 दौड़ां नाल हरा दित्ता है। ए सन हुण तक दीयां FM न्यूज़ हेडलाइंस।

डायल जिदा है जी नंबर 0181-42-174 यानी कि 01-812-342-174 जेकर तुसी नंबर डायल करोगी तां ही तां तुहाडी आवाज़ मैं सुनांगी ते मेरी प्यारी आवाज़ तुसी सुन सकोगे। बिल्कुल जी, फोन इन प्रोग्राम जो कि फरमाइशी है ते अज असी गल करनी है कि सारे ना स्पैशल वाला डे मना रहे ने, मतलब कि मदर्स डे। कि तुहानू लगता है कि सिर्फ साल दे विच एक दिन ही अपनी माँ नू, अपनी मम्मी नू, अपनी मॉम नू सैलीब्रेट वास्ते रखना चाहिए, मतलब सानू एक दिन ही तोहफा देना चाहिए ते अगों पिछों जिहड़े बाकी 365 दिन

0: जी दोस्तों, वाकई जी घर वर्गी मौज जड़ी कदे भी नहीं थी आती है। कदे भी घर वर्गा नज़ारा बाहर जाके किधरे नहीं आता। ता ही तुसी थोड़ा दिन भी बाहर घूम फिर लो ना, तो फिर दिल करता है कि नहीं असी वापस अपने घर चले जाइए। जिदा पक्षी शाम को अपने आलणिया दे विच आ जाते ना, इस तरह दिल जड़ा अपने घर विच ही आके लगता है। सो जी अज गलबात होगी जिन्हां दे नाल उन्हां दी पहली कॉल लग चुकी है। हैलो।
1: हेलो भैन जी, नमस्कार जी।
0: नमस्कार सर जी, सत श्री अकाल।
1: ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੋਲਦਾ ਗੋਪਾਲ ਨਗਰ ਜਲੰਧਰ।
0: ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ?
1: ਹਾਲ ਚਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਆਪਣੇ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੀ?
0: ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ?
1: ਬਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ।

कानूनी सेवावां अथॉरिटी एक्ट 1987 दी तारा 12 दे तहत योग नागरिक मुफ्त कानूनी मदद न्यायबंधु मोबाइल ऐप ते www.probono-doj.in तों प्राप्त कर सकते ने। एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पताए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: जी दोस्तों, छोटे जी कमर्शियल ब्रेक तो बाद मुड़ तो अपने प्रोग्राम वाल वधदी आ, जिहदा समा बहुत घट रह गया। मैनू उम्मीद है कि तुहानू अज दा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होवेगा, क्योंकि हर कोई अपनी माँ नू, अपने पापा नू, मम पापा नू बहुत बहुत प्यार करदा है ते जी उन्हां नू हमेशा याद करदा रहिंदा, क्योंकि कई बार जदों साडे तों दूर हो जांदे नहीं ना, फिर सानू वाकई उन्हां दा जिहड़ा अहसास है ज़्यादा तरसौंदा है, तड़फौंदा है। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से प्रोग्राम फोन इन पंजाब, फोन इन फरमाइश यानी कि पंजाबी तड़का, तो स्टूडियो की घड़ी तो जिहड़ा समा हो चुकिया। वैसे तो समा हर वेले बड़ा वधिया हुंदा, पर जिदा जिदा मतलब 5-7 मिनट रह जाते हैं ना, तुहाडा नहीं मेरा खुद का दिल जिहड़ा घाऊ मऊ करन लग जांदा कि हाए पता ही नहीं चला कदों ही प्रोग्राम जिहड़ा है ना वह अपना एंड पॉइंट ते पहुँच रहा। आखिरी कॉल जिहड़ी मैं रिसीव करदी हाँ। हैलो,
2: बापू तेरे मेहनत करके भरिया दाखला, सारा साल पढ़ाई करी तू, पढ़ाई से दिल ना तरिया पागला
1: जी।
2: मां प्यो की इज्जत करी वांग फुला भी परमार वे, बोर्ड में पेपर शुरू हो गए, पुत्रा हो जा तू तैयार वे।
1: क्या बात है जी, क्या बात है सर, की हाल चाल ने तुहाडे?
2: मैं प्यार भरी सत श्री अकाल है जी तुहानू ते तुहाडी सारी टीम नू मेरे वालों GS मुल्तानी जलंधर तों।
1: जी मुल्तानी जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। तुहानू पता है कि तुहाडी आखिर दे विच कॉल लगी है
2: जी, पिछली बारी भी आखिर च लगी सी, हुण वी।

जी बिल्कुल, काश किधर इदा हो जाए कि सानू कुछ बोलना ना पवे ते साडे दिल दी गल जड़ी है अगला परसन जड़ा अपने आप बुझ लवे। इदा हुंदा नहीं है, जिन जेकर बोल के ना दसो किथे पता लगदा है कि मैं की कह रही हाँ। 102.7 MHz से प्रोग्राम चल रहा जी होम स्वीट होम। ते जी इलायची जड़ी कि सब नू पसंद है, एक तां जी उदा रंग हरा रंग ते उत्तों उदी सुगंध इन्नी सोहनी खुशबू होंगी ना, फ्रैगनेंस होंगी है कि वाकई जिदा ही इलायची का डब्बा खोलो तो दिल करता कि बस हुणे मैं ही खानियां ने। खाण दे शौकीन हो? हाँ जी खा लेनी चाहिए कदी कदी इलायची, हालांकि बड़ी महंगी है और ये वरायटी बड़ी होंगी है, पर इलायची खाने के बहुत सारे फायदे ने। इलायची जड़े ने साडे पंचतंत्र नू मजबूत बनाउण दे विच हैल्प करती है। खाण तो बाद इलायची खाण नाल गैस्ट्रिक अते जिहड़ी सानू एसटीडी होंगी है ना एसिडिटी, वो घट जाती है जिन्हां दी हुंदी है। मैं हर किसी लिए नहीं कह रही, पर यह भी ख्याल रखना है कि यह ना हो कि तुसी कहो कि चलो जी तो खाण दे विच बड़ी लाभदायक है, बड़ा इहदा बेनीफिट है, तो डब्बी दी डब्बी तुसी मुका जाओ। ना जी ना, महंगी बड़ी है तो मम्मी को छत्तर परेड बड़ी होनी है। कदी कदी खा लिया करो, जेकर तुहाडे मुँह दे विच उह स्मैल आउंदी है तो तुसी उस वास्ते भी इहनूं यूज़ कर सकदी, उहदे वास्ते भी फायदेमंद है। इसनूं हौली हौली चबाउण दे नाल साह जिहड़ा है ताज़ा रहिंदा है, साह दे विच सुगंध आउणी शुरू हो जाती है। इलायची वाली चाह शरीर नूं ताजगी दिंदी है। सब नूं पता है कि जदों इलायची तो बिना चाह बनाई गई होवे तो फिर चाह दे विचों स्वाद नहीं हुंदा, है ना। कईआं नूं चाह दे विच काली मिर्च कुट के पाउणा, अजवाइन, सौंफ, वड्डी इलायची भी कई बार इस्तेमाल की जाती है। हर किसी इंसान का ना अपना अपना

पर जी दोस्तों, मैनू तां बड़ा पता लग रहा है कि जिंदगी बड़ी वधिया और खास करके आ वाला समा जिहड़ा है ना, ये बहुत वधिया लंघ रहा है। क्योंकि जी ये हैगा जी एफ एम दा समा, यानी कि गलबात तुहाडे नाल ते गीतां दी बहार जिहड़ी है लगदी रहिंदी है। प्रोग्राम होम स्वीट होम दे विच रणदीप कौर है तुहाडे नाल, ते गल कर रही सी मैं, तुहानू नोट करवा रही सीगी कि तुसी याद रखना कि जिहड़ा पाणी चौलां दा तुसी वरतों करनी है, सब तो पहले ना अपने हाथ धो के देख लैने। कई बार हुंदे कि कईआं नूं स्किन दी प्रॉब्लम हुंदी है, ते सिद्धा डायरैक्ट अपने फेस ते ना ला लिओ, ठीक है जी। ते उस तो पहले तुसी अपने हैंड वॉश करके देख सकते हो या स्प्रे करके देख सकते हो। कई बार तां तुहानूं इह चौलां दा पाणी पी के भी कहिंदे ने, जिन्हां ने पीता होया कहिंदे कि इह अच्छा हुंदा है। ते जी उस तो पहले कि इहनूं अच्छी तरहां धो लैणा है। चमड़ी लई ये फायदेमंद है, चेहरे नूं नरम ते चमकदार बनाउंदा है। चमड़ी दी जिहड़ी सोज हुंदी ना, उहनूं वी घटा के जिहड़े पिंपल जां तुहाडे मुहासे फेस ते हुंदे ने, उह दूर कर दिंदा है। वालां नूं मजबूत ते सिल्की बनाउण दे विच वी बहुत ही बैनीफिट हुंदा। जिद्दां कि पहले समें दे विच साडे जिहड़े बजुर्ग सीगे, असीं तां मतलब ओह चीज़ां ट्रेंड फॉलो नहीं कीता, मतलब हुण तां इन्नी ज़्यादा शैम्पू कंडीशनर ते होर पता नहीं कई कुछ आ गया है मार्केट दे विच, असीं शायद वह यूज़ करन लग गए हाँ। पर पहले समय दे विच दुध, कच्ची लस्सी या दही दे नाल जिहड़ा है वह बालां नूं कंडीशनर कर लिता जांदा सी, मतलब उही शैम्पू हुंदा सी ते उही सिल्की समूथ करन वास्ते एक ट्रेंड सीगा जो कि उन्होंने फॉलो किया सीगा। पर सानू तो हुण जी उन्हां चीज़ां दे विचों स्मैल आउंदी है, हाँ ना जी। यस जी, वालां दी जड़ां नूं पोषण दिंदा है की जी, जिहड़ी मैं गल तुहानूं दस रही हाँ, चौलां दा पाणी। हल्का ते पचन विच वी सौखा हुंदा है, पेट लई वी बहुत ही इहदे बैनीफिट्स हैगे ने, पेट दी तकलीफ विच वी राहत दिंदा हैगा, शरीर नूं तुरंत एनर्जी मिलदी है। जिद्दां कि असीं कोकोनट वाटर पीने, नारियल दा पाणी स्वाद लगदा है ना, बिल्कुल जी। हुण उह वी तुसीं पीना जरूर शुरू करो जेकर नहीं पीती है, क्योंकि हफ्ते या महीने च दो तीन नारियल जरूर पी लिया करो। गर्मी वध रही है हौली हौली, तो पानी जड़ा है वह जरूर पीना चाहिए। एंड जी चौलों का पानी जो कि शरीर को तुरंत एनर्जी दे देता है, उसी तरह जिस तरह सानू इस प्रोग्राम के पंजाबी घेंट जे वाली वाइब देन वास्ते गीत जड़े ने वो वक्रे वक्रे सिंगर्स दे सुनाए जा रहे हैं। एंड जी गुरशबद सिंह की आवाज़ के एक होर गीत, दिलों के राजे आ।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

गांव वालों बसंती को समझाओ, आजकल वो मेरी नहीं सुनती, सारा दिन एफएम रेनबो सुनती रहती है। ऑल डे लिसनिंग एंड लिसनिंग एंड लिसनिंग। गांव वालों अब मैं जा रहा हूँ एफएम रेनबो लाने। कसम सुनते रहिए 102.7 एफएम रेनबो।

दोस्त हमसफ़र साथी कोई भी रिश्ता होवे तुहाडा साथ जरूर मंगदा ते तुहानू किसी ना किसी दा साथ जरूर चाहिदा। आशा भोंसले और कुमार जी हुणा दी मां आवाज़ दे विच तुसीं ट्रैक इंजॉय कीता जी प्रोग्राम एम एड डे मेलोडीज़। दिल हुआ है उदास तेरे बिना जी बिल्कुल, पर तुहाडा दिल आपां उदास नहीं करना क्योंकि जी आपां सोहणे सोहणे गीत जिहड़े ने उस दौर दे मतलब कि 90s और उन्हां यादां नूं तरोताज़ा करन लई प्रोग्राम तुहाडे जिहड़े ने पसंदीदा सिंगर्स आशा जी होण, कुमार जी होण, किशोर कुमार जी होण, लता जी होण, इस सारे गीतां नूं एक प्रोग्राम दे विच सैट करके तुहाडे रेडियो सैट्स ते वक्रे वक्रे गीतां नूं तुहाडे तक पहुँचा रहे हैं। FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते। दिन हुआ है तो रात भी होगी जी बिल्कुल, दिन हुआ है तो रात भी होगी, मत हो उदास उससे कभी तेरी बात भी होगी। वो प्यार है ही इतना प्यारा, वो जो प्यार है तेरा वो है ही इतना प्यारा, जिंदगी रही तो उससे तुम्हारी मुलाकात भी होगी। सच्ची जी जेकर तुसी किसी नूं किधरे प्यार कर दियो उन्हों जता नहीं सकते, उन्हों एहसास नहीं करा सकते, पर समा आने पर अपने आप ये एहसास प्यार खूब अपने आप जड़े ने सामने आए जाते हैं। किशोर कुमार जी होना दी आवाज़ दे विच एक होर प्यारा जिहा गीत प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज़ दे विच।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: छोटा जिहा कमर्शियल ब्रेक ते ब्रेक तो बाद मुड़ तो हाजिर हाँ। रणदीप है तुहाडे नाल, दी प्रोग्राम चल रहा जी मिड डे मेलोडीज़।

मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस विज्ञान नवीनता टेक्नोलॉजी तरक्की और विज्ञान समाज के उद्योग दरम्यान तालमेल प्रति भारत की मजबूत वचनबद्धता दर्शाता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सबका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदर्शी अगुवाई राजनीतिक हिम्मत और कुशल अगुवाई याद किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि पोखण तो लैके पुलाड़ डिजिटल नवीनता रक्षा से उभर रही तकनोलॉजियां बेमिसाल तरक्की तक भारत की यात्रा ज्ञान से आत्म निर्भरता की शक्ति दर्शाता है। आलमी उथल पुथल के बावजूद देश की आर्थिकता लचकीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक वालों अज जारी की गई एक खोज रिपोर्ट मुताबिक वित्तीय साल 2026-27 अर्थव्यवस्था के 6.6% के वाधे का अनुमान है। रिपोर्ट में पिछले वित्तीय साल की चौथी तिमाही असल GDP विकास दर लगभग 7.2% रहने का अनुमान लाया गया। आलमी अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने एक मजबूत विकास गति बनाई हुई है। सूचकांक लचकीले आर्थिक गतिविधियों वाल इशारा करते हैं। हालांकि चौथी तिमाही थोड़ी मंदी जरूर आई है। रिपोर्ट मुताबिक अनुसूचित व्यापारक बैंकों वालों बैंक क्रैडिट वाधा एक साल पहला 11.0% के मुकाबले 16.1% तक वध गया। सूचना ते प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा आलमी अनिश्चितताओं के मद्देनज़र नागरिकों ते कारोबारियों नूं विदेशी मुद्रा की लोड़ वाली वस्तुओं ते घट खर्च करन दी अपील की है। अज नवी दिल्ली च CII सालाना व्यापार सम्मेलन नूं संबोधन करदिया उन्हां कहा कि पछमी एशिया विच संघर्ष अजे भी जारी है ते शांति की स्थिति अजे दूर है। देश लई आर्थिक मोर्चे ते जिम्मेवारी नाल काम करना महत्वपूर्ण है। उन्हां जोर दे के कहा कि नागरिकों नूं अपने रोजाना जीवन विच उन्हां खेतरां दी पछाण करनी चाहिए है जिथे विदेशी मुद्रा का खर्च घट तो घट किया जा सके। श्री वैष्णव ने कहा कि अजिहे खर्चों को घटाने के नाल नाल विदेशी मुद्रा कमाई वधाउण की लोड़ होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने लई दोवां उपरालियां दे नाल नाल चलना जरूरी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पटियाट सब डिवीजन च सैलानियों नूं लैके जा रहे एक वाहन के हादसाग्रस्त होने कारण 6 लोगों की मौत हो गई है। दो बच्चों समेत 4 होर गंभीर रूप से जख्मी हुए ने। जख्मियों नूं टांडा मैडिकल कॉलेज दाखिल करवाया गया। मृतकों विचों 5 सैलानी गुजरात के रहने वाले ने जबकि ड्राइवर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का रहने वाला है। यह हादसा अज सवेरे काकीरा लाहरू सड़क से वापरिया। पुलिस मुताबक मृतकों की पछाण ललित ते उन्हां दी पत्नी ममता प्रियांक उन्हां दी पत्नी काजल ते पुत्र निशांश वजों हुई है। ड्राइवर की पछाण जसवंत वजों हुई है। यह सारे हिमाचल प्रदेश घूमण आए सन ते मनाली तो डलहौजी जा रहे सन। चंबा के पुलिस सुपरटेंडेंट विजय सकलानी ने दसिया कि हादसे समय इलाके च भारी मीह पै रहा सी। उन्होंने कहा कि घटना तो तुरंत बाद बचाव ते राहत कार्य शुरू किए गए ने। मौसम विभाग ने अज पंजाब के वख-वख हिस्सों च हनेरी झक्खड़ नाल बिजली लिशकण बारे ऑरेंज अलर्ट ते इस तों बाद 14 मई तक येलो अलर्ट जारी किया है। इस समय दौरान पंजाब च वख-वख थावां ते हल्की तो दरमियानी बारिश भी हो सकती है। हालांकि अगले 3 तों 4 दिनों दौरान वध तों वध तापमान च कोई वड्डी तब्दीली आउण दी संभावना नहीं है। IPL क्रिकेट विच अज पंजाब किंग्स दा मुकाबला धर्मशाला च शामी 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स नाल होवेगा। ते आखिर च खास खबरां एक बार फिर तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व समारोह में किया संबोधन। कहा सोमनाथ अमृत पर्व अगले 1000 साल देश की प्रेरणा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों पछमी एशिया संघर्ष दौरान राष्ट्र को मजबूत करने में देशवासियों को भाईवाल बनने का सद्दा। आज राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस मनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में काकीरा लाहरू सड़क से एक कार हादसे च 6 सैलानियों की मौत 4 होर गंभीर जख्मी। अते IPL क्रिकेट विच अज पंजाब किंग्स का मुकाबला धर्मशाला च शामी 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स नाल होवेगा। इस दे नाल ही राष्ट्रीय खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा 1:10 का प्रदेशिक खबरों का अगला बुलेटिन तुसी सुनोगे 2:30। नमस्कार।

जी दोस्तों, कंटिन्यू कर दें जी प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज। हमें कहाँ शौक़ था मोहब्बत का, हमें कहाँ शौक़ था मोहब्बत का, नज़रें तुमसे मिली और तुमसे ही मोहब्बत हो गई। 102.7 FM दी प्रोग्राम कंटिन्यू कीता जा रहा जी, क्योंकि जी समा जिहड़ा 10 मिनट का रह गया, तो 10 मिनट दे विच कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, तो कुछ कुछ तो होना बनता है।

जी दोस्तों, मोहब्बत की है तुम्हारे लिए। बिल्कुल जी, उसी तरह जिस तरह तुहानू मोहब्बत है FM रेनबो दे नाल, आकाशवाणी जलंधर दे नाल, ते हर उस प्रोग्राम दे नाल जिहड़ा तुसीं सुणदे हो ते पसंद करदे हो। जी बिल्कुल, और प्यार जिहड़ा ना ये होना भी चाहिए, क्योंकि प्यार जिहड़ा है अपने नाल सब तो पहले, ते फिर नाल दी नाल अपने उन्हां दोस्तां दे नाल, अपने हर उस रिश्ते दे नाल होवे ते वाकई जिंदगी बहुत सोहनी लंघदी है। अनुराधा पौड़वाल ते मनहर उदास दी आवाज़ दे विच तुसीं ये ट्रैक इंजॉय किया जी। प्रोग्राम चल रहा मिड डे मेलोडीज, ते समा जिहड़ा है वो हुण मैं फड़ नहीं सकदी, उन्हें भजे जाना है ते आपां उन्हूं तुरदे रहण देना है, क्योंकि मैं भी उहदे नाल नाल ही चलना है। जी बिल्कुल, तुसीं समझ गए होवोंगे कि स्टूडियो की कड़ी ते 1:55 ते 38 सैकेंड हो चुके ने, ते इस प्रोग्राम यानी कि मिड डे मेलोडीज का लास्ट वाला ट्रैक आप सब ने इंजॉय करना है जी। बिल्कुल 102.7 मेगाहर्ट्स से, तो मैंने हुण दिओ इजाज़त, फिर जल्दी मिलन का वादा करके जानी हाँ, तो जल्द आवांगी किसी होर दिन। पर ये सारे शो जिहड़े तुसीं अज मेरे नाल इंजॉय किए ने, फिर आप इस तरह इनू कंटिन्यू करांगे। स्टे ट्यून 102.7 मेगाहर्ट्स।

प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। तुसी सुन रहे हो जी प्रोग्राम दिल आज शायर है, एक ऐसा सफ़र जिथे शब्द सिर्फ लफ्ज़ नहीं हौसले बन जाते हैं। जिंदगी कदे हसाउंदी है ते कदे सिखाउंदी है, पर हर दिन साढ़े वास्ते एक नवी उम्मीद लैके आउंदा है। ते उन्हां ही उम्मीदां नूं शायरी दे रंग विच रंग के असीं तुहाडे तक लैके आउंदे हाँ। तुहाडे अपने विचार, तुहाडियां अपनियां यादां, तुहाडे अपने अहसास। मैं तुहाडा दोस्त आर जे बिपन सुमन आप सब का स्वागत करदा, इस्तकबाल करदा तुहाडे अपने प्रोग्राम दिल आज शायर है दे विच। चलो अज की महफिल शुरू करिए जी कुछ सोहने अहसासा, कुछ हौसले वाली शायरिया, तो दिल में मुस्कुराहट देने वाली गलों के नाल। कि मुश्किल आन का हौसला घटाया ना कर, मुश्किल आन तो हौसला घटाया ना कर, राह लंबिया होन ता कदम रुकाया ना कर। जिंदगी हर दिन नवा सबक सिखाउंदी है, तू हस के जी दिल नू रुलाया ना कर, मुश्किल आन तो हौसला घटाया ना कर। सो इस प्रोग्राम दे विच तुसी भी शिरकत करनी है, तुसी भी हाजिरी लगवानी है जी, अपनी शायरी नू, अपने दिल दे जज्बातां नू अपने आरजे दोस्त तक भेज के। पर एक छोटी जी रिक्वेस्ट है जी कि शायरी सिर्फ वो जो अज दिल नू खुश कर देवे, मतलब कि अज असी दुखां दर्दां दी गल ना करके प्यार ते मुहब्बत दी ही गल करनी है। कोई भी जिहड़ी कह लो कि दुख दर्द भरी शायरी या ओ शायरी जिहड़ी साडे दिल नू दुखावे या साडी अखां चों हंझू आ जाण दुख दे मारे, ओ शायरी अज असी नहीं भेजांगे। सिर्फ ते सिर्फ ओ शायरी जो दिल नू सुकून देवे, प्यार मुहब्बत दा रिश्ता जो चेहरे ते मुस्कुराहट लैके आवे, ओ शायरी अज तुसी अपने आरजे दोस्त नू भेजोगे जी। नंबर है 9855 10 10 27, 9855 10 10 27। इस नंबर दे उपर तुसी भेजो शायरी जी, और तुहाडा दोस्त प्ले करदा है तुहाडे वास्ते गाणा जो तुहाडे सुपनिआं नू साकार करन दी इक छोटी जी कोशिश है। गाणे दा बोल चन्न दा कर, ते चंद दा घर कित्थे कित्थे है, ते किवें किवें दियां गल्लां कीतियां हुईयां ने इस गीत दे विच सतिंदर सरताज दी आवाज़ सुनदे हां।

FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्स, आकाशवाणी जलंधर 103.6 मेगाहर्ट्स, आकाशवाणी अमृतसर ते न्यूज़ ऑन EIR दे जरिए दोस्त इस वेले FM रेनबो चैनल दे नाल जुड़े हुए ने। इस प्रोग्राम दे विच पहली हाजरी लगवाउण दे लई साडे कोल पहुंच चुके ने जी राम स्वरूप अरोड़ा चौंक छेलियां सुल्तानपुर लोधी तो अपनी शायरी लिख के साडे तक एक सांझी कीती है जी। लिख रहे ने कि कोशिश दोनों तरफ से हो तो निखर जाते हैं रिश्ते, कोशिश दोनों तरफ से हो तो निखर जाते हैं रिश्ते, एक तरफा कोशिशों में अक्सर बिखर जाते हैं रिश्ते, जहां हो प्यार और सम्मान वहां मजबूत हो जाते हैं रिश्ते, और जहां लहजे में बस बेरुखी हो वहां खामोश हो जाते हैं रिश्ते। सो बस फिर दोनों पासियों प्यार मोहब्बत का सिलसिला बरकरार है जी, और ये प्यार जिहड़ा इन्ना गूढ़ा हो चुका कि हर बार प्रोग्राम दे विच पहली हाजरी लगवाउण दे लई साडे दोस्त पहुँच जाते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया राम स्वरूप जी अपनी शायरी साडे तक सांझी करन दे लई, और इन्हां दे पिछे ही आण पहुँचे ने जी लोहा बाजार मलेरकोटला तो राकेश कुमार जी। कहिंदे जी ना तुसीं दूर जाओ ना अहीं दूर जावांगे, अपने अपने हिस्से की दोस्ती निभावांगे, बहुत वधिया लगेगा जिंदगी दा ये सफर, तुसीं सानूं याद रखना, असीं तुहानूं याद करके मुस्कुरावांगे।

प्यार भरी नमस्कार अर्ज कर रहे ने साडे दोस्त कहंदे कि अभी कुछ अरमान जिंदा है सीने में, सामने मत आया करो मोहब्बत जाग जाती है। मैं कहा जी जे साडे सामने आने दे नाल तुहाडे अंदर दी मोहब्बत जागदी है, असीं तां फिर वार वार तुहाडे अगे आवांगे। सो साडे दोस्त ने जी गुखी भाड़ीवाल पिंड भाड़ीवाल अमृतसर पंजाब तों सो जी मैं लगता है कि बैक टू बैक तीन चार शायरियाँ हो गई हूँ, एक खूबसूरत जहा गीत नहीं गीत आप सुन चुके हैं, गज़ल सुनते हैं जी। आप जगजीत सिंह ते चित्रा जी की आवाज़ गाया ही हुई गज़ल, ये तेरा घर ये मेरा घर कितना प्यारा घर है।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े बीएमसी चौक जलंधर। अर्जियां भेजन दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं अनुराधा, लेकर हाजिर हूं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। दोस्तों आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है एडल्ट इम्यूनाइजेशन, यानी वयस्कों या बड़ों में टीकाकरण। आमतौर पर बच्चों के वैक्सीनेशन से लोग परिचित हैं, लेकिन बड़ों में टीकाकरण कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। आज के विषय से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रताप सिंह, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल नई दिल्ली। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
3: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अवसर देने के लिए।
2: जी डॉक्टर साहब, आज का जो विषय है उससे जुड़ा पहला मेरा सवाल है कि एडल्ट्स के लिए कौन सी वैक्सीन है जो लेनी चाहिए।
3: जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो WHO ने इस बार थीम दिया है वैक्सीनेशन के लिए, वो थीम है फॉर एवरी जनरेशन वैक्सीन्स फॉर।

0: ओके तो जैसे हम जानते हैं कि पीडियाट्रिक एज ग्रुप में जो बच्चों में है हमारे पास ऑलरेडी इस्टेब्लिश टीके हैं, लेकिन अब वैक्सीन जो है वो अडल्ट्स में है, वो बुजुर्गों में है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी उपलब्ध हैं। तो जैसे हमने देखा कोविड के टाइम में कोविड-19 वैक्सीन जो है वो अवेलेबल थी, जो बड़ों में बच्चों में सभी को दी गई। हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, निमोनिया के लिए जो है निमोकोकल वैक्सीन हैं, पोलियो की जो वैक्सीन है वो यूजुअली पीडियाट्रिक एज ग्रुप में दी जाती है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो अडल्ट्स में भी दी जाती हैं। ठीक है, बुजुर्गों के लिए जैसे अभी जूस्टर वैक्सीन अभी अवेलेबल हो गई है पिछले 1-2 साल में, वेरिसेला वैक्सीन है, वेरिसेला यूजुअली एडल्ट्स और पीडियाट्रिक एज ग्रुप में यूज होती है। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जैसे MMR वैक्सीन है यूजुअली पीडियाट्रिक एज ग्रुप में है, लेकिन कुछ ग्रुप में जो है वो बड़ों में भी दी जाती है। येलो फीवर वैक्सीन है जिसे हम ट्रेवलर वैक्सीन भी बोलते हैं, जैसे किसी स्पेसिफिक ऐसे रीजन में आपको ट्रेवल करना है आउट ऑफ कंट्री, ठीक है, जहाँ पे येलो फीवर का एंडेमिसिटी है, तो उसमें जो है येलो फीवर वैक्सीन जो है हमारी कंट्री में हमारे देश में दी जाती है।
1: जी, बहुत सारी बातें हैं अभी आपसे जानने को, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है। फिलहाल यहाँ लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, आगे की बातें इसके बाद।

0: मेरा अगला सवाल है कि किन बीमारियों से बचाव संभव है टीकाकरण के द्वारा?
1: जी देखिए, बहुत सारे जो बैक्टीरियल डिजीजेज होते हैं, वायरल डिजीजेज होते हैं, उनमें ये जो टीकाकरण है वो काफी हद तक फायदेमंद पाया गया है। ठीक है, जैसे हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस जो पीलिया होता है, लीवर की डिजीजेज होती हैं। ठीक है, अगर आप समय रहते हुए वैक्सीनेशन करा लेंगे तो आगे फ्यूचर में जो है पीलिया होने के चांसेस बहुत कम है। निमोनिया है, निमोनिया के लिए हिप वैक्सीन अवेलेबल है, निमोकोकल वैक्सीन अवेलेबल है।

0: अच्छा जी, जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तुसी हर बार जिहड़ा है वो ट्रैक लैके आउंदे हो जिहड़ा काफ़ी लंबे समय तो प्ले नहीं होया, तो
1: हाँ
0: बहुत
1: जी
0: बहुत शुक्रिया जी। लेकिन तुसी एक लाइन ही सुनाई ना, सो चलो खैर कोई गल नहीं, पहले कॉलर दोस्त हो तुसी।
1: मैनू
0: असी
1: मैनू ना गाना सुन के फिर कदे गाना मैं 2003 दा सुनया है, रेडियो ते नहीं चलया कदे इस चैनल ते।
0: जी, खैर जी अज आपां चला देना जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, तुसी
1: थैंक यू
0: तुहाडी
1: सर,
0: कोशिश वास्ते थैंक यू जी, थैंक यू
1: थैंक
0: सो मच। लो जी, साडे दोस्त ने जिन्नी कु सी उन्होंने अपनी वल्लों पूरा ऐन मजे दे नाल गा के इस ट्रैक नूं सुना दिता है। बस हुण उम्मीद है जी इस गाने ते उस पार, यानी कि साडे अगले कॉलर दोस्त दी। किहड़े दोस्त ने उन्हां नूं पहले ही दस देने जी, तैयारी कर लो। अगर तुहाडी फरमाइश किसी पंजाबी गीत दी है तां उस दे बोलां नूं हिंदी दे विच चंगे तरीके नाल जां पेपर ते लिख लो, या अपने ज़िहन दे विच अपने मन दे विच उस नूं रट लो ते उस नूं चंगे तरीके दे विच गुनगुना के जिद्दां वाकई सिंगर गाउंदे ने जी उद्दां गा के तुसी सुनाणा है। ਅਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਦੂਸਰਾ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੇਕ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਉੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਲਕਾ ਯਾਗਨਿਕ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਨੂ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਟਰੈਕ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮੂਵੀ ਹਿੰਮਤ।

0: newsonair.com ਜਾਂ newsonair.gov.in ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਯਮਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
1: कठिन है प्रश्न ये भैया, आए बारंबार इस उम्र में पूछे बीवी क्या करते हो प्यार, मुझसे क्या करते हो प्यार। अरे पूछे मेरी बीवी, डू यू लव मी, डू यू लव मी,
2: तो क्या कहा आपने?
1: अरे बरसों से तो कहता आया आई लव यू, I love you, हर दिन हर पल।

0: क्या बात है जी, तुहाडी आवाज़ 'च पंजाबी 'च गीत सुन के बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये गीत हिंदी दे विच रिकॉर्ड होया। सो जी, बहुत शुक्रिया जी, ते बहुत ही खूबसूरती दे नाल तुसी इस नूं जेहड़ा है पंजाबी भाषा दे विच गा के सुनाया जी, क्या ही बात है। अच्छा जनाब, पूछना चाहवांगे जी कि पालमपुर 'च खास की करदे हो जी तुसी उत्थे?
1: सर पालमपुर च मेरा इत्थे बेटा रहिंदा है, बहू है, जानी नूह रानी, आपां तां पंजाबी च गल करांगे,
0: क्या बात है। हाँ जी,
1: ते दो पोते ने, उन्हां दा अखां दा हस्पताल है,
0: अच्छा जी,
1: दोनों आई सर्जन ने, ते बस मैं इत्थे कदे पंजाब चला जाना, कदे इत्थे हिमाचल आ जाना,
0: ते पंजाब
1: बस
0: च केड़ी
1: इदां
0: जगह
1: ही
0: जी?
1: पंजाब हिमाचल दे विच तुरिया फिरदा रहना।
0: क्या बात है, तुसी दोनों जड़ियां हद्दां ने तुसी उन्हां नूं जोड़ के रखे होया जी ना।
1: बिल्कुल जी, और पंजाब वर्गी कोई थां नहीं और हिमाचल वर्गी सुंदर कोई थां नहीं।
0: क्या बात है जी, खूबसूरत है जी, बस यही देखो छोटे छोटे अंग ने साडे देश दे, ते इन्हां करके साडा समुच्चा देश बहुत खूबसूरत है।
1: बड़े भागा वाले जी साडे, आपां नूं इहो जे सूबे नसीब होए वे ने।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी, और असीं भागा वाले हां कि सानूं इहो जिहे लिसनर नसीब होए ने जी।
1: धन्यवाद जी,
0: बहुत
1: धन्यवाद।
0: बहुत शुक्रिया जगदीश राय जी, तो बहुत ही खूबसूरती दे नाल तुसीं अज दे साडे इस टास्क नूं अंजाम दित्ता जी। तुहाडा आ रिहा जी रेडियो सेट दे उत्ते ट्रैक, करना तुसीं इंजॉय जी, और जल्द की तुहाडी साडे नाल फिर तो गलबात होवे। तुसीं कॉल कीती जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया जी,
1: शुक्रिया सर,
0: थैंक यू
1: शुक्रिया,
0: जी।
1: धन्यवाद।
0: मैं क्या जी, बिल्कुल ही रौनकां ही ला छड्डियां जी इन्हां ने, गाने नूं इस अंदाज़ 'च गाया ते मैनूं ते लगा नहीं कि यह गीत मैं कदे हिंदी 'च भी सुनिया सीगा। सो बस इहो जिहे ही एहसास दे नाल मैं चाहुंदा कि तुहाडी कॉल जदों साडे तक पहुँचे ते तुसीं अपनी फरमाइश मेरे नाल सांझी करो, ते उस गीत नूं हिंदी तों पंजाबी या पंजाबी तों हिंदी जदों तुसीं कन्वर्ट करो, तां बस इदां लगे कि बस कि सचमुच विच गाणा इसी भाषा 'च रिकॉर्ड होया।

0: नहीं करारों में क्या काटा सर, ये भी थोड़ा औखा है। चलो सर जी,
1: बहुत बहुत शुक्रिया जी।
0: सर जी पंजाबी बंदे है, पंजाबी बंदे तो हिंदी विच ट्रांसलेट करना औखा हो जाता थोड़ा।
1: नहीं खैर, बहुत शुक्रिया जी, तुसी पूरी कोशिश कीती जी, बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद जी। और मैनू लगता मैं हसया और जिन्ने साढ़े सुनने वाले दोस्त ने उन्होंने भी बहुत तुहाडी कॉल का जिहड़ा आनंद लिया होएगा। शुक्रिया जी तुहाडी फरमाइश करन लग्गिया प्ले, और इस उम्मीद दे नाल कि जल्द तुहाडी ते साडी फिर तो मुलाकात होगी। शुक्रिया सुखदेव जी कॉल करन दे लई, थैंक यू जी। सो सुखदेव जी ने मैं कहा जी रौनक ही लातियां, कहिंदे कि मैंने क्या प्यार में खाटा है जी। चलो बाकी हूँ अगले कॉलर के उपर डिपेंड करता जी कि वह किन्ना क साढ़े अज्ज के इस प्रोग्राम दियाँ रौनकों जोड़ा है चार चंद लगा। खैर असी इन्हना जी की सुखदेव जी की पसंद का ट्रैक प्ले कर लग्या जी, लाल चंद जमला जट जी की आवाज़।

मैं कहा जी मैं की प्यार मैंने क्या प्यार में खाटिया है ना जी, तेरे नी करारा में पाटिया, मैंने की प्यार में खाटिया ना। सो इदें करके हिंदी पंजाबी जी असी मिक्स जी करके अज्ज दे

0: प्रोग्राम नू एंजॉय कर रहे हो? हेलो,
1: हाँ जी, हाँ जी, पूरा
0: मजा आ रहा है?
1: पूरा जी, पूरा साढ़े मतलब के सारे सवाल जवाब है।
0: अज असी ओल्ड इज गोल्ड म्यूजिक रखा होया, क्योंकि अज कल दे जमाने दे विच असी देखते हाँ ज़्यादातर नवे गाने सुनते हाँ, तो अज पुराने गाने सुन के कहो जा लग रहा तुहानू?
1: नवे गाने च दम नहीं है जी, नवे उही रीमिक्स करके और शब्दां नू तोड़ मरोड़ के बनाए जा रहे हैं,
0: हाँ जी, ते
1: पर
0: बस फिर
1: पुराने गाणियां दे विच शब्दां दे कोई अर्थ निकलदे सी।
0: हाँ जी, ते
1: हाँ
0: बहुत
1: जी,
0: बहुत शुक्रिया तुसी साडे नाल प्रोग्राम दे विच जुड़े, सानू बहुत वधिया लग्या, ते इदां ही जुड़दे रहो साडे नाल।
1: धन्यवाद जी, धन्यवाद।
2: दोस्तों, पुराने गाणियां दी गल ही कुछ होर हुंदी है, ना ओवर म्यूजिक, ना लाउड बीट, सिर्फ दिल नू छू जाण वाले जज्बात। ते दोस्तों, इस तरह ही सुनदे हां साडा अगला जिहड़ा म्यूजिक क्वेश्चन मैं तुहानू देण लगी हां, तुहानू पहला म्यूजिक प्ले करके सुनाने हां। सी

वाह जी वाह दोस्तों, क्या ही प्यारा गीत है। लिखे जो खत तुझे ते बस तुसी भी जिदे जिदे ले गीत या खत लिखे हुए ने ना, तुसी बस अपना अपना फोन चुकना है ते डायल करना है 0181-2342-174 ते सानू सिर्फ इन्ना क दसना है एक केड़ी मूवी दा गीत है ते इनू गाया किसने है। ते इस दे नाल ही असी इंजॉय करांगे एक बहुत ही प्यारा जा गीत। उदों तक असी तुहाडे जवाबां दा वेट करदे हां ते तुसी सानू साडे फेसबुक ते पेज ते मैसेंजर ते मैसेजेस भी कर सकदे हो।

वेलकम बैक दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा जी लव यू जिंदगी। दोस्तों असी अक्सर शिकायत करते हैं कि मेरे को पैसे नहीं हैं, मैं किसी की मदद किवें करा। अज की एक सच्ची कहानी ओमकार नाथ सिंह जी की है, जिन्होंने दुनिया मेडिसिन मैन कहती है। वो रिटायर्ड इंसान हैं तो कोई बहुते अमीर नहीं, पर वो रोज़ दिल्ली दियां गलियां विच घूमते ने ते लोकां दे घरां तों फालतू दवाइयां इकट्ठियां करते ने जो लोग सुट्टन वाले होंदे ने। वह इन्हां दवाइयां नूं चैक करके गरीबां नूं मुफ्त वंडदे ने। उन्होंने हुण तक लखां रुपए दियां दवाइयां बचा के हज़ारां जानां बचाईआं हन। दोस्तों ओमकार नाथ जी सानूं सिखाउंदे ने कि नेकी करन लई जेब भरी होना जरूरी नहीं, बस नीयत भरी होनी चाहीदी है। सो जे साडे कोल जी मदद करन दा जज्बा है ना, तरसता अपने आप निकल आउंदा है। बस सोचना यह है कि असी अज किसे लई की कीता। जिनी देर तक आपां मिलके सारी गल सोचते हैं, उन्नी देर तक एक ट्रैक भी पेश करते हैं जी, मास्टर सलीम ते गुरलेज अख्तर की आवाज़ च।

जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर के उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in। एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दिते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दिते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे एक कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तो हनु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: 2026 च 269,505 रैगुलर प्रीख्यार्थियों विचों 254,744 पास होए ने ते पास फीसद 94.52% रही है। कुड़ियां दी पास फीसद 95.96 ते मुंडियां दी पास फीसद 93.23% रही। कुड़ियां ने मुंडियां नूं एक बार फिर तो पिछे छड्ड दित्ता है। बोर्ड दे चेयरमैन डॉक्टर अमरपाल सिंह ने नतीजों दे वेरवे सांझे करदिआं दस्सिआ
1: नतीजे के अनुसार जेड़े पास परसेंटेज दे बेस ते पहले पांच जिले हैं अमृतसर फिरोजपुर पठानकोट के अनुसार पहले तीन स्थान प्राप्त किए ने अरलीन शर्मा डॉटर ऑफ जसविंदर कुमार सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल जैतो फरीदकोट इस बच्ची दे 646 नंबर आए हैं 650 विचों 99.38% दे हिसाब नाल दूजे नंबर ते रहे ने मनी महेश शर्मा पिता दा नाम विजय कुमार गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चमोली बसी रोपड़ जिन्हां दे 645 नंबर आए हैं 99.23%। तीजे नंबर ते रिया राणी सतनाम सिंह श्री गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन हुशियारपुर इन्हां दे 645 नंबर आए हैं 99.23 नाल।
0: इस तो इलावा एक ई रिक्शा चालक का पुत्र महेश कुमार ठाकुर बोर्ड की दसवीं जमात की प्रीख्या च जलंधर जिले का टॉपर रहा। लाडोवाली रोड स्थित सरकारी गर्ल्स सैकेंडरी स्कूल के विद्यार्थी महेश ने वित्तीय मुश्किलों का सामना करदिया दृढ़ता ते अनुशासन 650 विचों 643 अंक प्राप्त किए। 98.92% अंकों के नाल उसने सूबे की मैरिट सूची में तीजा स्थान भी हासिल किया। ये खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRNU जलंधर। साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर। यूट्यूब ते साडा चैनल है @AIR जलंधर। उपराष्ट्रपति सीबी राधा कृष्णन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज राष्ट्रीय तकनोलॉजी दिवस के मौके पर देश के विज्ञानियों और इंजीनियर्स को शुभकामनाएं दीं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने जिक्र किया कि इस दिन पोखरण टेस्ट रेंज ते परमाणु परीक्षण किए गए सन जो कि देश की आत्म निर्भरता और रणनीतिक शक्ति वाल एक प्रभाषित पल साबित होया। उन्होंने कहा कि 11 मई 1998 में भारत ने दुनिया को अपनी शानदार विज्ञानक ते तकनीकी समर्थावां दा प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय तकनोलॉजी दिवस के मौके पर देशवासियों को बधाई दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दिन भारत उन्होंने विज्ञानियों की अणथक मेहनत ते समर्पण को माण नाल याद करता है जिन्हों के उपरालों ने 1998 सफल पोखरण परीक्षणों को संभव बनाया। चंडीगढ़ प्रशासन के सभ्याचारक विभाग ने मुड़ उसारे गए सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन की 75वीं वरेगंढ मनाने लिए आज चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर च सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया। भारत सरकार के सभ्याचार मंत्रालय वालों देशव्यापी यादगारी प्रोग्राम शुरू किए गए ने। इस सूबा पदरी प्रोग्राम दौरान सैकड़े भागीदारा ने गुजरात के पवित्र मंदिर तो सीधा प्रसारण देखा। सभ्याचार सकत्र मनदीप सिंह बराड़ चंडीगढ़ प्रशासन के होर अधिकारियों के नाल इस प्रोग्राम च शामिल हुए। जश्न के हिस्से वजो एक कलश यात्रा भी कढ़ी गई। इस प्रोग्राम ने भारत की अमीर सभ्याचारक विरासत नूं उजागर करदिआं विश्वास सरदा अते राष्ट्रीय स्वैमान दी भावना नूं उत्साहित कीता है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सिख कौम के महान जरनैल बाबा बंदा सिंह बहादुर वालों की सरहद फतेह को समर्पित विशेष धार्मिक प्रोग्राम उलीके गए ने। श्रोमणी कमेटी के मैंबर अवतार सिंह ने दसिया कि गुरुद्वारा श्री चप्पड़चिड़ी साहब विखे 10 मई को आरंभ हुए श्री अखंड पाठ साहब के भोग 12 मई को पाए जाएंगे। उन्होंने दसिया कि अज रात को गुरुद्वारा श्री चप्पड़चिड़ी साहब विखे दीवान सजाए जाएंगे तो कल 12 मई को गुरुद्वारा श्री चप्पड़चिड़ी साहब विखे लांडरां तो पंच प्यारियां की अगुवाई से श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की छत्र छाया हेठ एक विशाल फतेह मार्च भी सजाया जाएगा। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ने वकारी आलमी यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स ऑफ आर इनोवेशन यूनिवर्सिटी ब्रांड ते प्रतिष्ठा की श्रेणी च विश्व पद्धर ते 78वां स्थान प्राप्त करके एक होर महत्वपूर्ण मील पत्थर प्राप्त किया। इस रैंकिंग का ऐलान बीती 7 मई को किया गया। इस प्राप्ति नाल गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी दुनिया दी प्रमुख यूनिवर्सिटियां च शुमार हो गई है ते एक मजबूत आलमी अकादमिक ब्रांड वजों उभरी है। जिक्रयोग है कि यूनिवर्सिटी बहुत घट भारतीय जनतक यूनिवर्सिटियां विचों एक है जिन्होंने यह वकारी कौमांतरी मानता प्राप्त हुई है। इस मौके खुशी का इजहार करदिया वाइस चांसलर प्रोफेसर करमजीत सिंह ने कहा कि यह सम्मान यूनिवर्सिटी नाल जुड़े फैकल्टी विद्यार्थियों साबका विद्यार्थियों अधिकारियों कर्मचारियों ते सारे हिस्सेदारां दे समर्पण वचनबद्धता ते दूरदर्शी उपरालियां दा सांझा नतीजा है। मौसम विभाग ने पंजाब हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में अज तो 15 मई तक 5 दिन वक्त-वक्त थावां ते हल्की तो दरमियानी बारिश होने की पेशीनगोई की है। मौसम विभाग ने दोवां सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेश में कल ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया है जिस तों बाद 15 मई तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दिन दौरान गरज चमक नाल हल्की तो दरमियानी बारिश ते तेज़ हवावां वगन की संभावना भी जताई गई है। हालांकि इन दिनों दौरान वध तों वध तापमान च कोई वड्डी तब्दीली नहीं होगी। इस दौरान पंजाब च वध तों वध तापमान बठिंडा च

0: 38.5 डिग्री सैलसीयस दर्ज किया गया, जबकि हरियाणा च 38.8 डिग्री सैलसीयस के नाल रोहतक सब तो गर्म जिला रहा। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला धर्मशाला च शामी 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स नाल होगा। दियाखर च खास खबर एक बार फिर तो सरकार ने कहा किसी भी पेट्रोलियम उत्पाद की कोई कमी नहीं है, देश को 60 दिनों का कच्चा तेल ते कुदरती गैस और 45 दिनों का एलपीजी भंडार मौजूद है। पंजाब राज चोन कमिशन वालों सूबे 16 मई नूं होने वाली 105 नगर निगम नगर कौंसल नगर पंचायत चोणों लिए चोन प्रोग्राम का ऐलान, वोटों की गिनती 29 मई होगी। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने 10वीं जमात का नतीजा ऐलानिया, पास फीसद 94.52% रही, कुड़ियों ने मुंडियों को पिछे छोड़ दिया। फरीदकोट के जैतो की हरलीन शर्मा रही अव्वल। मौसम विभाग वालों अज पंजाब के वख-वख हिस्सों च हनेरी झक्खड़ ते बिजली लिशकण बारे ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके नाल ही प्रदेशक खबर खत्म हुई। राष्ट्रीय खबर का अगला बुलेटिन तुसी सुनोगे शाम 7:30। नमस्कार
1: दीदी। हाँ? देखो

नमस्कार, पेश है एफएम न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात च सोमनाथ अमृत पर्व समारोह नूं कीता संबोधन। किया सोमनाथ अमृत पर्व अगले 1000 सालां लई देश दी प्रेरणा होवेगा। सरकार ने कहा कि किसी भी पेट्रोलियम उत्पाद की कोई भी कमी नहीं है ते देश कोल 60 दिनों का कच्चा कोला ते तेल कुदरती गैस ते 45 दिनों का एलपीजी भंडार मौजूद है। पंजाब राज चोण कमिशन वालों सूबे च 26 मई नूं होण वालियां 105 नगर निगमां नगर कौंसलां ते नगर पंचायतां चोणां लई चोण प्रोग्राम का ऐलान। वोटां की गिणती 29 मई नूं होवेगी। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने 10वीं जमात का नतीजा ऐलानिया। पास फीसदी 94.52 फीसदी रही। कुड़ियां वालों मुंडियां नूं पिछे छड्डदिआं फरीदकोट दे जैतो दी हरलीन शर्मा रही अव्वल। जलंधर पुलिस कमिश्नर ने जिले च अमन कानून की व्यवस्था बनाई रखने लई समूह रेस्टोरेंट क्लब ते होर अजियां लाइसेंस शुदा खाण पीण वालियां थावां अद्धी रात 12 बजे तक मुकम्मल बंद करन दे हुकम जारी कीते ने। भारतीय तकनोलॉजी संस्थान रोपड़ ने अज VUI कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड नाल एक समझौता पत्र ते दस्तखत कीते। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ने वकारी आलमी यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स फॉर इनोवेशन च यूनिवर्सिटी ब्रांड ते प्रतिष्ठा दी श्रेणी च विश्व पद्धर ते 78वां स्थान प्राप्त कीता। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले च काकीरा लाहरू सड़क ते एक कार हादसे च 6 सैलानियों की मौत, 4 होर गंभीर जख्मी। मौसम विभाग वालों अज पंजाब दे वख-वख हिस्सों च हनेरी झक्खड़ नाल बिजली लिशकण बारे ऑरेंज अलर्ट ते इस तो बाद 15 मई तक येलो अलर्ट जारी। आईपीएल क्रिकेट च अज पंजाब किंग्स दा मुकाबला धर्मशाला च शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स नाल हो रहा है। इस एफएम न्यूज हेडलाइंस हुण तों कुछ पहलां बाद तुसीं साडा अगला प्रोग्राम इंजॉय करोगे फिल्मी दुनिया।

हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल की हाल चाल ने उम्मीद करदा कि मेरे सारे लिसनर्स एकदम ठीक ठाक ते त्यार बर त्यार ने मेरे नाल इस सफर ते चलन दे लई इस एंटरटेनिंग सफर ते मेरे नाल निकलन दे लई 102.7 एफएम रेनबो ते हरीश हाजिर है और इस वेले एफएम कड़ी ते 7:53 ते 54 सैकेंड हो चुके ने और ठीक टाइम ते तुहाडे कोल एंट्री मार के मैं

पहुंच गए हैं और बिल्कुल भी देरी नहीं। और साडा ये पहला पड़ा जिहड़ा साडा अज दा 11 बजे तक इसे तरह तुसी मेरे नाल इस एंटरटेनिंग इनफोटेनमेंट सफर नूं इंजॉय करोगे। बहुत सारी गल्लां, बहुत सारे गाने और बहुत सारी एंटरटेनमेंट दे नाल भरपूर इस साडी जिहड़ी शाम रहण वाली है और तुसी मेरे नाल इस सफर दा मज़ा लोगे पूरी तरह दे नाल। और पहला साडा जिहड़ा अज दा प्रोग्राम है पड़ा जिहड़ा साडा हुंदा है एंटरटेनमेंट दा, फिल्मी दुनिया जिस दा आगाज़ हो चुका है। और फिल्मा तो असीं सारे बहुत देखते हैं, मतलब अजकल वो टाइम नहीं है कि सानू हफ्ते बाद एक फिल्म वेखनी पवे। मतलब जदों दिल साडा करदा, जदों असीं चाहिए, जदों असीं मतलब देखना चाहिए कोई भी फिल्म, नवीं तो नवीं फिल्म महाराज असीं वेख सकते हैं। अज मतलब कोई भी इदां दी साडे कोल रोक पाबंदी सानू कोई भी नहीं हैगी और साडे कोल हर फैसिलिटी मौजूद है कि असीं कुछ भी देख सकते हैं फिल्मा खास करके। और अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स ने मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, जड़ियां असी वड़िया वड़िया LEDs लाइया घर और मिनी थिएटर की तरह फील लैने हैं। नो डाउट सब कुछ साढ़े कोल अवेलेबल है, बट उन्हां फिल्मा दे पिछे दी जो कहानी है वो इत्थे पता लगती है महाराज। प्रोग्राम फिल्मी दुनिया दे विच हरीश थोड़े नाल वह गल्लां शेयर करता है, उन्हां हस्तियां की गलबात शेयर करता है जिन्हां दी फिल्मां असी वड्डे पर्दे ते वेखदे आ और उन्हां नूं फिल्मां दे विच कम करदे आ ते असी वेखदे आ, विलनगिरी करदे, हीरोगिरी करदे असी देखदे आ, खुश हुंने आ और बड़े एडमायर हुंने आ। बट उन्हां दी जाती जिंदगी किवें दी है, किवें उन्हां ने इत्थों तक पहुँचण लई संघर्ष किया, यही साडा प्रोग्राम है। और अज भी अजिही हस्ती की गलबात करांगे, वह हस्ती जो अज भावें साडे विच मौजूद नहीं है बट अज ही दे दिन उन्हां दा बर्थ होया सी, जन्म होया सी। और असी FM रेनबो दे वल्लों उन्हां नूं प्यार भरी श्रद्धांजलि देवांगे उन्हां दे इस जन्म दिवस ते। ओह कमाल दा एक्टर, विलन ऑफ बॉलीवुड, जिन्हें अपनियां अखां दे नाल, अपनी अदाकारी दे नाल ऐसा जादू बिखेरिया। कहिंदे ने कि एक्टिंग जिहड़ी है ना वह अदाकार जिहड़ा जरूरी नहीं कि सोहना होवे, जरूरी नहीं कि बहुत ब्यूटीफुल होवे, हैंडसम होवे तां ही वो वधिया एक्टर हुंदा। बट उस शख्स ने अपनी एक्टिंग दे दम ते वो कर विखाया जिन्हों करन दे लई हर शख्स संघर्ष करदा और रब कोल दुआवां मंगदा। उन्हें भी दुआवां मंगियां सी, शिद्दत दे नाल इस सफ़र ते निकलिया सी और उसनू मंजिल मिली। मैं गल कर रहा सदाशिव अमरापुरकर दी, सदाशिव अमरापुरकर जिन्हां ने अपनी अदाकारी दा लोहा ऐसा मनवाया कि असी उन्हां दी एक्टिंग दे दीवाने हो गए। बहुत सारी फिल्मां अर्ध सत्य फिल्म होवे, भावें सड़क फिल्म दे विच ओ महाराणी वाला कैरेक्टर होवे, ट्रांसजेंडर दा कैरेक्टर जिहड़ा उन्होंने निभाया सी, हुण पता लग गया होएगा तुहानूं मैं किन्हां दी गल कर रहा। सदाशिव अमरापुरकर उन्हां दे बारे अज असी गल करांगे, अज ही दे दिन उन्हां दा बर्थ होया सी और किवें उन्होंने फिल्मां दे विच आ के पहली फिल्म तो ही अवार्ड जितया, किवें नाटक करते सी, किवें फैमिली अपोज करती सी, सारियां गल्लां जिहड़ियां ने वह मैं उन्हां दी लाइफ दे नाल जुड़ियां होईयां तुहाडे नाल शेयर करांगा और नाल नाल उन्हां दीयां फिल्मां दे गाने भी तुहाडे तक पहुँचाए जाणगे। आओ फिर हुण फिलहाल एक ट्रैक सुनते हैं और उस तो बाद वापस आना तो गल्लां बातां दा सिलसिला अदे चलता रहेगा सदाशिव अमरापुरकर दी लाइफ दे नाल जुड़िया।

0: फैसले लेते वक्त मुझे बहुत शर्म आ रही है, लेकिन क्या करूं, पैसों के मामले में मैं बहुत कमीना हूं।
1: कुछ लोग चिराग के लव की तरह हो।
2: बिल्कुल जी बिल्कुल, और ए इदां दा चिराग, इदां दी रोशनी सी उना दी, जिसने हर एक

0: वाली कोलाराम।
1: क्या बे?
0: मैं तुझसे हजार बार कह चुका हूँ और आज आखिरी बार कह रहा हूँ, और आखिरी बार के बाद जो बार आता है उस बार से कह रहा हूँ कि मेरे रास्ते से हट जा।
1: अबे तेरा कौन सा रास्ता? रात को नींद में चलने वाला लकड़ भग्गा, तेरा कौन सा रास्ता बे?
0: बिजली का रास्ता।
2: बिजली का रास्ता, आग फिल्म दा डायलॉग। और इस फिल्म दे विच जिहड़ी जुगलबंदी सी दोवां दी, कादर खान साहब और सदाशिव अमरा फुरकर दी, जो इन्हां ने कॉमेडी कीती सी ना, कमाल सी, अल्टीमेट सी। भावें इश्क फिल्म दे विच कॉमेडी होवे, कुली नंबर वन फिल्म दे विच कॉमेडी होवे, आंखें फिल्म दे विच होवे, इह सारियां फिल्मां इदां दियां सी जिस विच इन्हां ने कॉमेडी दा तड़का लगाया और अपनी एक अलग इमेज जिहड़ी है लोकां तक पहुँचाई, और लोकां नूं लगन लगा कि यार ये शख्स विलन सी ते मतलब अल्टीमेट है, कॉमेडी भी कमाल दी करदा है। और इस करके 90s दे विच उन्होंने अपनी एक्टिंग दे विच कैरेक्टर आर्टिस्टिक जिहड़ी छवि सी वो लियाउणी शुरू की, बहुत सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट कैरेक्टर रोल किते, कॉमेडी रोल किते, विलन तो है ही सी, और इस तरह अपने आप नूं वर्सटाइल एक्टर दे तौर ते उन्होंने इंडस्ट्री दे विच सामने लियांदा और हर किसी ने उन्हां दी एक्टिंग दा लोहा मन्निया। तुहानूं दस दिया कि 2014 दे विच उन्हां नूं लंग्स की बीमारी की वजह दे नाल इस जहान नूं छड्ड के जाना पिया, और इंडस्ट्री नूं पूरे बॉलीवुड नूं उन्हां दे जाण तों बाद बड़ा वड्डा घाटा पिया। और तुहानूं दस दिया कि उन्होंने बॉम्बे टॉकीज फिल्म उन्हां दी लास्ट फिल्म सी जो 2013 दे विच रिलीज़ हुई सी, और इस फिल्म दे विच उन्हां दे उन्होंने कैरेक्टर आर्टिस्ट दे तौर ते एक रोल कीता सी और बड़ा ही अल्टीमेट, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी दे नाल उन्हां दा एक सीन भी है और बड़ा पॉपुलर, और उस फिल्म दे विच उन्हां दी अदाकारी जिहड़ी है वो लोकां उस दरम्यान उन्हां दी तबीयत जिहड़ी है ज़्यादा नासाज हुई सी, ख़राब हुई सी, और मुंबई दे एक हॉस्पिटल दे विच उन्होंने इस जहान नूं हमेशा हमेशा दे लई अलविदा कह दिता। बट उन्हां दी फिल्मां उन्हां दी अदाकारी अज भी साडे नाल है।

पेश ने एफएम न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात च सोमनाथ अमृत पर्व समारोह नूं कीता संबोधन, कहा सोमनाथ अमृत पर्व अगले 1000 सालां लई देश दी प्रेरणा होवेगा। सरकार ने कहा है कि किसी भी पेट्रोलियम उत्पाद की कोई कमी नहीं है ते देश कोल 60 दिनां दा कच्चा तेल ते कुदरती गैस ते 45 दिनां दा एलपीजी भंडार मौजूद है। पंजाब राज चोण कमिशन वालों सूबे च 26 मई नूं होण वालियां 105 नगर निगमां, नगर कौंसलां ते नगर पंचायतां चोणां लई चोण प्रोग्राम दा ऐलान। वोटां दी गिणती 29 मई नूं होवेगी। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने 10वीं जमात दा नतीजा ऐलानिया, पास फीसदी 94.52% रही। कुड़ियां वल्लों मुंडियां नूं पिछे छड्डदियां फरीदकोट दे जैतो दी हरलीन शर्मा रही अव्वल। जलंधर पुलिस कमिश्नर ने जिले च अमन कानून दी व्यवस्था नूं बनाई रखण लई समूह रेस्टोरेंट क्लब ते होर अजियां लाइसेंस शुदा खाण पीण वालियां थावां अद्धी रात 12 बजे तक मुकम्मल बंद करन दे हुकम जारी कर दिते ने। भारतीय तकनोलॉजी संस्थान रोपड़ ने अज VUI कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड नाल एक समझौता पत्र ते दस्तखत कीते। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ने वकारी आलमी यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स फॉर इनोवेशन च यूनिवर्सिटी ब्रांड ते प्रतिष्ठा दी श्रेणी च विश्व पद्धर ते 78वां स्थान प्राप्त कीता है। हिमाचल दे चंबा जिले च काकीरा लारू सड़क ते एक कार हादसे च 6 सैलानिया दी मौत, 4 होर गंभीर जख्मी। मौसम विभाग वालों अज पंजाब दे वख-वख हिस्सों च हनेरी झखण नाल बिजली लिशकण बारे ओरेंज अलर्ट ते इस तो बाद 15 मई तक येलो अलर्ट जारी। इस एफएम न्यूज हेडलाइंस हुण तों कुछ कु पल बाद तुसी साडा अगला प्रोग्राम एंजॉय करोगे मसाला मिक्स।

हाँ जी, मैं क्या जी, अपनिया सारिया टेंशनां नू कर दिओ हुण साइड ते फिक्स, क्योंकि स्टार्ट हो गया प्रोग्राम मसाला मिक्स। और हरीश नाल तुहाडे और तुहाडी भी मौजूदगी जिहड़ी है इस प्रोग्राम दे विच इसे तरह बनी रहनी चाहीदी है। और साडा दूसरा पड़ा इस सफर दा 11 बजे तक हरीश तुहाडे नाल अज इसे तरह गल्लां बातां शेयर करेगा, इनफोटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट दे नाल भरपूर साडे प्रोग्राम्स जो तुसी सुन रहे हो, मेरे नाल आनंद माण रहे हो, नाल नाल गाने भी तुहाडे तक पहुँचा रहा मैं। और मसाला मिक्स प्रोग्राम साडा जिस विच एंटरटेनमेंट तो हुंदी ही हुंदी है, नो डाउट, हो ही नहीं सकता कि एंटरटेनमेंट ना होवे महाराज। और उहदे नाल नाल इनफोटेनमेंट का तड़का लगेगा और अजीबो गरीब गल्लां बातां तुहाडे तक मैं इस प्रोग्राम दे विच पहुँचावांगा। और जेकर तुहाडे कोल भी कुछ यूनीक गल्लबात हैगी, यूनीक इनफॉर्मेशन तुहाडे कोल हैगी है, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਹੈ 98 55 10 10 27। ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਕ, ਔਰ ਯੂਨੀਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੌਮਿਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਟਿਆ ਪਿਆ 98

107 FM रेनबो दे हरीश नाले थोड़े और शो चल रहे हैं मसाला मिक्स और नाल नाल मौज मस्ती भंगड़ा भंगड़ा पैंदा रहना चाहिए और मोबाइल के उत्ते वीडियो शीडियो तो असं बनाने बहुत वीडियोज़ बनाने और फोटोज़ वगैरह भी क्लिक करते रहने खास करके अजकल तो दौर ही महाराज वीडियो बना के इंस्टा शिंस्टा और रील शील पाउन का है कि नहीं पाने कि नहीं आ हा हा हा हा मैनू सब पता है और

पेश ने एफएम न्यूज हेडलाइंस। सरकार दा कहना है कि देश च किसे भी पेट्रोलियम उत्पाद दी कोई कमी नहीं है। 60 दिना दा कच्चा तेल, 60 दिना ले कुदरती गैस ते 45 दिना दा एलपीजी भंडार मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव आने वाले हजार सालां लई भारत दे दृष्टिकोण नूं प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर मुड़ उसारी दे 75 साल पूरे होने ते महापूजा कीती। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी रुजगार ते आजीविका मिशन ग्रामीण कानून 2025 नूं लागू करन लई एक नोटिफिकेशन जारी कर दिता है। पंजाब राज चोण कमिशन वल्लों सूबे दियां 105 स्थानक संस्थावां नूं चोणां 26 मई नूं करवाउण दा ऐलान कीता। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा है कि भारत मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर मुक्त टोल वसूली सिस्टम की शुरुआत नाल टेक्नोलॉजी आधारित शाहराह प्रबंध दे एक नवे युग च प्रवेश कर गया है। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने 10वीं जमात का नतीजा ऐलानिया। पास फीसद 94.52% रही। कुड़ियां वल्लों मुंडियां नूं पिछे छड्डदियां फरीदकोट दे जैतो दी हरलीन शर्मा रही अव्वल। जलंधर पुलिस कमिश्नरेट ने जिले च अमन कानून की व्यवस्था नूं बनाई रखने लई समूह रेस्टोरेंट क्लब ते होर अजिहियां लाइसेंस शुदा खाण पीण वालियां थावां अद्धी रात 12 बजे तक मुकम्मल बंद करन दे हुक्म जारी कर दिते ने। भारतीय तकनोलॉजी संस्थान रोपड़ ने अज VUI कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड नाल एक समझौता पत्र ते दस्तखत कीते। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ने वकारी आलमी यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स फॉर इनोवेशन च यूनिवर्सिटी ब्रांड ते प्रतिष्ठा दी श्रेणी च विश्व पद्धर ते 78वां स्थान प्राप्त कीता। मौसम विभाग वल्लों अज पंजाब दे वख-वख हिस्सियां च हनेरी झखण नाल बिजली लिशकण बारे ओरेंज अलर्ट जारी। ਇਸ ਸਨ ਐਫ ਐਮ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ ਦਿਲ ਚਾਹਤਾ ਹੈ।

हाँ दसो भी पानी दा रंग केड़े किदां दा है, किहो जिहा है, और पानी दी अज कल किल्लत महसूस हो रही है कई लोगों नू, और पानी दी किल्लत महसूस ना होवे इस करके मतलब अपने नल जिहड़े ने ओह बंद करके रख्या करो, और पानी दी वेस्टेज ना करया करो। पानी तां बेचारा इहे गहार लगाउण डिया, तुसीं उहनू पानी दा रंग पुछण डिए हो, ओहदा मतलब पानी दे मामले दे विच पानी दे आपे वी पानी सिर तों उपर तक जा रहा है। समझ आ रही है कुछ कि नहीं? तुम पानी का रंग पूछण डे हो महाराज। खैर सिलसिला स्टार्ट करते हैं तो मैसेजेस पढ़न दा। सुखदेव सिंह, नरिंदर कौर, सन्नी मन्नी, काका बिट्टू, लाडी, मोहन मास्टर, जनक नगर जलंधर तो मैसेज आया, और कहिंदे ने कि दोस्ती फिल्म का गाना सुना दिओ, ते इन्हां दे लई दोस्ती फिल्म का गाना फटाफट प्ले करते हैं, तो फिर वधदे हां अगे अगली फरमाइश वल।

ओहो, कोरा क्यों रह गया महाराज? तुसी मतलब बाल पेन या जेल पेन ले लेंदे महाराज, लिख लुख लेंदे कुछ, फिर की फर्क पैंदा उत्थे जिंदगी दे विच? आप भी कोई काम शख्स नू कर लेना चाहिए, जे करना ही हुंदा ते अपने महाराणी जी नू दे दिंदे, उन्होंने कुछ लिख देंदे, जरूर लिख दे महाराज, उन्हां दी तां भाषा ही नहीं समझ आउणी तुहानू, पर फिर भी कुछ ना कुछ लिख देना ही उन्होंने फिर जीवन भरिया भरिया तुहानू फील होना सी खैर ये ब्यूटीफुल ट्रैक मेरा जीवन कोरा कागज़ तुसी इंजॉय किया, और 107 FM रेनबो ते दिल चाहता है प्रोग्राम इंजॉय कर रहे हो हरीश दे नाल। अगला मैसेज पढ़ते हैं, प्रोग्राम पेश करता जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। आप कैसे हो जी? मैं बिल्कुल ठीक हाँ जी। फिल्म रोटी, आवाज़ किशोर कुमार, लता मंगेशकर, गीत के बोल गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, रघुनाथपुरा ज़िला श्री गंगानगर राजस्थान से, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, ये मैसेज मेरे तक पहुँचा रहे ने, और थैंक यू सो मच मैसेज भेजण दे लई। ते हुण तुहाडी फरमाइश पूरी करदे आ, गोरे रंग पे ना इतना गुमा, मेरी आवाज़ च नहीं, लता जी और किशोर जी की आवाज़।

गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल, और गाउंदे रहना चाहिए जिंदगी दे विच, क्योंकि गाउन नाल लखां परेशानियां दूर होंदियां ने, टेंशनां मिट जांदियां ने, जिवें हुण तुहाडियां मिट रहियां ने और फरमाइशां तुहाडियां पूरियां हो रहियां ने। मैसेज पढ़दे हां जी अगले लिसनर दा। आदरणीय प्रसारक जी सर प्रेम नमस्कार। नमस्कार जी, फिल्म बरसात गीत हमको सिर्फ तुमसे प्यार है अनारकली बाजार जगराओं से, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैसेज मेरे तक पहुँचाने के लिए। एक होर मैसेज पढ़ते हैं। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत रोटी फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं, और वो गाना प्ले हो चुके है जी। और फिल्म अगला मैसेज जड़ा है वो पढ़ते हैं जी। कस्बा बराड़ा ज़िला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकिरत, गुरशबद सिंह राहुल, ये साढ़े तक मैसेज आया जी। थैंक यू सो मच। और होर भी मैसेज पढ़ते हैं बट पहला फरमाइश पूरी कर दें जी। बरसात फिल्म का गाना हमको सिर्फ

बिल्कुल जी बिल्कुल, किसी दे बिना वाकई नहीं गुजरने चाहिए। और दिल चाहता है प्रोग्राम भी तुहाडे बिना नहीं महाराज सफल हो सकता, चल सकता, क्योंकि तुहाडा प्यार इस प्रोग्राम नू मिलता है और असी इस प्यार दे नाल वध फुल रहे हैं कट्ठे ही। 107 FM रेनबो ते शो चल रहा दिल चाहता है और तुहाडे मैसेजेस दा सिलसिला जारी है। आओ एक होर मैसेज पढ़ते हैं। नमस्कार जी, फिल्म राम तेरी गंगा मैली, गीत मुझे बुलाए तेरी बाहें, फरमाइश करता गाँव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से, विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा, सतीश कड़वासरा, योगेश कड़वासरा और युधव कड़वासरा, ये मैसेज मेरे तक पहुंचा रहे हैं, थैंक यू सो मच। एक अगला मैसेज पढ़ते हैं जी। सुप्रीम नमस्कार, कोई भी गीत में शामिल करें। नज़दीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज है जी। नमस्कार जी, कोई भी गीत सुना दें। धनौरी तेली वाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, हार्दिक धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच मेरे तक मैसेज पहुँचाने के लिए। और आज फिर राम तेरी गंगा मैली का ये ट्रैक इंजॉय कर दें जी।

102.7 FM रेनबो ते हरीश हाजिर है और इस वेले सफर दा आगाज हो चुका है शामे गजल और गजलां दा ए प्रोग्राम जिस विच ए तवक्को है ए पूरी शिद्दत है प्रोग्राम दे विच और गजलां दे विच कि तुहानू अपने नाल इस मुहब्बत दे सफर ते नाल लैके जाणगियां और तुहानू खूबसूरती दा एहसास दवाउणगियां और खूबसूरती जिसनू मानन दे लई असी कदे कदे वक्त नहीं कढ पाउंदे और ये खूबसूरती हर शै दे विच है, हर उस चीज़ दे विच है जिनू असी अपने तो दूर कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि किसी शख्स की गल होवे, खूबसूरत एक कायनात है, एक कुदरत है, हर एक शै इस कुदरत की खूबसूरत है।

कोई ऐसे भी आता है क्या, जैसे लंबी बेचैनी के बाद आती है चैन की एक गहरी सी सांस। थक कर निराश बैठे किसी शख्स का थामने से हाथ, आता है जैसे उसमें फिर से उठ जाने का विश्वास। किसी को पहली बार देखते ही होठों पर आती है जैसे मुस्कुराहट, जैसे तन्हाई से भरे मेरे कमरे में किताब के गिरने की कोई आहट। तुम आना तो ऐसे ही जैसे ना पाने की इच्छा, ना खोने का डर, तुम्हारे होने से जो आती हो बस एक राहत। वो राहत तुम्हारे होने से है, सिर्फ एक तुम्हारे होने से।

लौट आते हैं पेड़ भी सारे वापस बीजों में, कहीं और उगने की अभिलाषा में। लौट आता है सुख भी वापस एक असमाप्य लगने वाले दुख के बाद। सुखवती नदियों में भी लौटता है बारिश के बाद पानी। बसंत लौटता है फूलों के साथ, समेटता हुआ पतझड़ के सूखे पत्ते, और लौटती हैं जैसे स्मृतियां कविताओं कहानियों में एक लंबे वक्त के बाद। वैसे ही लौट आना तुम भी वापस प्रेम में एक अंतहीन लगने वाले विरह के बाद। लौटोगे ना, क्योंकि लौट आना प्रेम में इतना मुश्किल नहीं है। लौटोगे ना, कहीं ये नजरें फेरोगे तो नहीं।

तुम होती तो बताता तुम्हें कैसे कैसे मैं सजाता तुम्हें, आंखों में रात का काजल, गालों पे सुबह की धूप मलता, होठों पे शाम का सुर्ख रंग, माथे पे लगाता सितारे और चांद सिलकर पहनाता तुम्हें, गले में बाहों का हार होता, कलाई में मेरा प्यार होता, कानों में पहनती मेरी सांसें, जुल्फें सुलझाती उंगलियां, पैर में धड़कन पहनाता तुम्हें। तुम होती तो बताता तुम्हें कैसे कैसे मैं सजाता तुम्हें, तुम होती तो मैं बताता तुम्हें।

कई बार वो पुकारता है मुझे, सुनो ये मन, और मेरे प्रत्युत्तर हां के बाद चुप हो जाता है। उसे कुछ पूछना नहीं होता, दरअसल वो तसल्ली करता है कि मैं उसके आसपास हूं। अगर ऐसा कोई शख्स आपकी जिंदगी में है तो आप खुशकिस्मत हैं, जो एक तसल्ली मांगता है आपके साथ होने की, आपके पास होने की, और उसे फिक्र होती है आपकी और आपके साथ की। अगर गलती से भी हाथ छूट जाए तो लगता है कि वो हमसे दूर चला गया। हाथ छूटने भर की दूरी बर्दाश्त नहीं होती उसको, है ना? बड़े लकी हैं आप अगर आपके पास वो शख्स है तो।

शाम में गजल जिसका लुत्फ तुसी उठा रहे हो मेरे नाल, और इस प्रोग्राम नूं इत्थे खत्म करना पैना। डोंट वरी, तुहाड़ा मेरा सफर 11 बजे तक इसे तरह बनिया रहेगा 102.7 FM रेनबो ते। स्टे ट्यून्ड।

एक प्यार का नगमा है जिसका आगाज हो चुका है, और हरीश दे नाल तुहाडा ये सफ़र जिसका आगाज होया सी 7 बजे, और ये सफ़र आ पहुँचे ठीक 10:30 बजे, 10:30 ते 1 सेकेंड हो चुका है, और हरीश नाल तुहाडे, और इस सफ़र दे विच साडा पड़ा एक प्यार का नगमा है जिथे ये रात और ये समा होर भी खूबसूरत बनेगा तुहाडा मेरे और इना रेट्रो गाणियां दे नाल। आओ फिर आगाज़ करते हैं इस गाने दे नाल। स्टे ट्यून्ड विद मी।

हर शाम लौट आती है एक चिड़िया बगीचे में लगे अमरूद के पेड़ पर वापस। पेड़ कहीं नहीं जाता, ना ही जा सकता है, इसलिए वह उस चिड़िया की दृष्टि से देखता है दुनिया को। चिड़िया अपनी चहचहाहट में भर लेती है दुनिया के सभी दृश्य और सौंदर्य। पेड़ घर है उस चिड़िया का और चिड़िया पेड़ की दुनिया। हर कोई किसी न किसी अभाव की पूर्णता है, हर कोई संपूरक है एक छोटे से रिश्ते से। जीवन का कितना गहरा बिंब रचती है ये प्रकृति, है ना। हम भी किसी के पूरक हैं, हम भी किसी चीज के अधूरे हैं।

कमरे की एक दीवार पर टंगा कैलेंडर जो हर बीतते दिन में तुम्हारी याद दिलाता है। हवा का कोई झोंका आता है और पन्ना उसी तारीख पर ठहर जाता है जिस दिन कभी मैं ठहरा था तुमसे अलग होकर। अब भी उस तारीख को देर तक देखता हूं मैं, जैसे कोई रास्ता हो जहां से तुम लौट सकती हो, मगर वक्त चुपके से आगे बढ़ जाता है और मैं उसी दिन में थोड़ा सा रह जाता हूं। सिर्फ तुम्हारी याद में, तेरे ख्यालों में।

हर रोज सुबह खाली हाथ लेकर उठ रहा, टूटे हुए ख्वाबों के बोझ तले खुद को जिम्मेदारियों की भट्टी में झोंक देना, स्वयं की राख के ढेर को दिल में कहीं चुपके से दबा देना और हंस कर कह देना सब ठीक है। शायद यही जीवन है ना। हाँ, यही जीवन है।

कई बार ऐसा होता है बस मौन ही अंत में रह जाता है, अपने भीतर की विकलता किसी अंधेरे की आगोश में गुम हो जाती है। शब्द अपनी सीमाएं तलाश कर लेते हैं, आत्मा जैसे ठहरना सीख जाती है। यही है प्रेम को सीख जाना, प्रेम को पा जाना, प्रेम को हासिल कर जाने की परिस्थिति।

तुमसे जरा सा प्रेम पाने की उम्मीद में कितना अपमान सह लिया। खुद को कोसते हुए मैंने अपना ही आईना खराब कर लिया। हर जगह मैं ही गलत हूं, ये सोचकर खुद को ही दरकिनार कर दिया। मुस्कुराना जिंदगी दा दस्तूर है, और इदां दी बहुत सारियां चीज़ां जिंदगी च होंदियां, पर उस तो दिल छोटा कदी भी नहीं करना, और हमेशा हर चीज़ तो कुछ सीख के अगे वधना ही जिंदगी दा नाम है। और असी भी अगे वधदे हां, और इस प्रोग्राम नूं इत्थे वाइंड अप करन दा वेला आ गया, इस सफर नूं इत्थे खत्म करदे हां, और जिंदगी दे सफर च तुहाडे नाल दोबारा मुलाकात जरूर होएगी। मैनूं दिओ इजाजत, बाय, टेक केयर। ए लास्ट ट्रैक इस प्रोग्राम का तुहाडी पेशे नजर है।